हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 22 सेकंड हुए हैं। अब मंगल ध्वनि के साथ हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आपकी सेवा में आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 MHz पर। श्रोताओं, कुछ लम्हों बाद सुबह के 6 बजे चाहते हैं। अब हिंदी समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। उसके तुरंत बाद आप विविध भारती से सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन

0: शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं खुद पर विश्वास करो, सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 195। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार है गायक अनूप जलोटा। भाग 10। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हेराही प्यार के। आठ बजकर 15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा आज अभिनेता निर्माता आदित्य चोपड़ा पर। इसका पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सुन सकते हैं। 10 सुबह पिटारा में आज के मेहमान सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत सुनेगा। इस बातचीत का आज दूसरा भाग आप सुन सकेंगे। ग्यारह बजे रंग तरंग और 12:05 पर दोपहर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 सखी सहेली इसके अंतर्गत सुनेगा संवाद और विकास के विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस और 1 कप चाय का अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर सुनिएगा कहानी पद्मश्री की राहीबाई सोमा पोपुरे महाराष्ट्र की बीज माता और सुनिएगा मुझे कुछ कहना है फोबिया से कैसे बचे। 4 हेलो फरमाइश और 5 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। 4 साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा 7:00 से। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए। इनसे मिलिए में आज सुनिए गिटार वादक अनिकेत गुंदेवार से जयंत पात्रिकर की बातचीत का तीसरा भाग। हवा महल में रात 8 सुनिए प्रहसन जान बची लेखन विष्णु दत्त।

गौड़का और निर्देशन जयदेव शर्मा कमल का। आठ बजकर 15 मिनट पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार, 10 बजे छाया गीत सुनिएगा और 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 195।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाई ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिबाने जा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती से कार्यक्रम वंदन वार सुन रहे थे। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश खिदमत है कार्यक्रम रूपरेखा।

श्रोताओं, आपकी खिदमत में हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। पहले हल्की नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद प्रातः 6:55 पर संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। श्रोताओं, आज प्रातः 7:10 पर हरियाणवी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे लोक रंग। कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन सकते हैं।

श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम होगा विविध भारती से और 12 बजे यादों की महफिल आप सुनेंगे विविध भारती से। दिन में 1:10 पर गीतमाला कार्यक्रम भी आप विविध भारती से सुनेंगे। श्रोताओं, दिन में 1:05 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र लिए चलेंगे।

श्रोताओं, दिन में 2:30 पर सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती से, और दिन में 3 सखी सहेली कार्यक्रम भी आप सुनेंगे विविध भारती से। 4 गीतों भरी कहानी का आनंद लीजिएगा विविध भारती से, और आज शाम 5 आप हमारे केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम थारी म्हारी पसंद।

श्रोताओं, आज शाम 6:20 पर प्रभु वंदना का कार्यक्रम सुनेगा भक्ति संगीत। 6:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग। आज शाम 7:00 किसानवाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम महारे गांव। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से आज शाम 7:30 पर। और रात्रि 8:00 आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनेंगे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। श्रोताओं, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ले चलेंगे। आज रात्रि 10:00 आप हमारे केंद्र से सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम।

आइए श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी प्रातः 5:55 पर। कल सुबह 6 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 6:05 पर कार्यक्रम वंदन वार आप सुनेंगे विविध भारती से। पेश खिदमत होगी कार्यक्रम रूपरेखा कल प्रातः 6:45 पर। 7:10 पर आप हमारे केंद्र से सुनेंगे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग, और सुप्रभात का आप आनंद ले सकते हैं कल प्रातः 7:40 पर।

श्रोतों, कल प्रातः 8:30 पर विविध भारती से आप सुनेंगे सदाबहार सुरीले कार्यक्रम भारत की गूंज। ये कार्यक्रम आप कल प्रातः 9:00 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम भी विविध भारती से सुन सकते हैं।

नमस्ते हिसार, ये कार्यक्रम कल सुबह 10 बजे आपके लिए प्रसारित होगा। रंग तरंग ये 11 बजे कार्यक्रम आप सुनेंगे विविध भारती से, और यादों की महफिल 12 बजे आपको सुनाया जाएगा विविध भारती से। सदाबहार फिल्मी नगमे दिन में 2:30 पर आप विविध भारती से सुनेंगे, और सखी सहेली कार्यक्रम दिन में 3 बजे आप विविध भारती से सुन पाएंगे। कल 4 बजे गीतों भरी कहानी आप विविध भारती से सुनेंगे।

श्रोताओं, कल शाम 5 बजे आप हमारे केंद्र से फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो हिसार सुनेंगे। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत कल शाम 6:20 पर और कल शाम 6:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे उमंग।

कल शाम 7 बजे खेती किसाना से थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से और 7:30 पर कार्यक्रम होगा महारेगा। कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे पंजाबी गीत और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा कल रात्रि 8:30 पर।

श्रोताओं, कल रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेश आपके गीत हमारे। कल रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मिला जुला खुलासा। कुछ लम्हों बाद सुबह के 6:55 हुआ चाहते हैं। अब संस्कृत समाचारों के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। प्रतीक्षा के हल्के से पल हमारे साथ।

0: और अब पहले संस्कृत में, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमम् अन्तिमम् च चरणम् सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीम् प्रत्यागतवान्। ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नीर अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य, आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः, अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्र मोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य परीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामिदिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिम प्रतिविंशति क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया

0: मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान अग्रिकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Modi said that Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said, India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She said, stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms.

0: नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी असार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज के लोकरंग कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणवी गीत संगीत के साथ।
1: विश्वकर्मा

लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, सादा जीवन, उच्च विचार, यूं यह मारी हरियाणवी संस्कृति का मजबूत आधार।

रोवे से तू ये भेस कवारे ने बाबुल की घड़ी ये उम्र बता दी पड़ी रही सबारे में और ईसा कितने पति लेना चाहे तो जग सारे में धर्मराज के लिखा हो जा ये धर्म दवा।

एके ना लागी चोट तेरे भी इतना दुख हो से दूं तेरा गले घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओट बिन समझे बेकूफ बतावे।

वो है जिसका रंग, वो है जिसका रंग कुछ शाम था।

उस कोरी का भेद बता जिसका जम्फर लाल था दुपट्टा जिसके हाथ में रुमाल था ऐसा रात बात करे थी देख के निहाल था चेहरा था सुडोल गोल बोल पे कमाल ओए पीरम के लाडुआ की।

ये था आज का हरियाणवी गीत संगीत कार्यक्रम लोक रंग। इसी के साथ है आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग आजाद सिंह के संग। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है आपके लिए कार्यक्रम सुप्रभात।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुप्रभात का शुभारंभ हम करते हैं आज के पंचांग के साथ। श्रोताओं, आज 21 मई सन 2026 का दिन है, आज गुरुवार है, आज पंचमी तिथि है जो सुबह 8:26 तक रहेगी। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें, इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। आज राहु काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:43 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज पुष्य नक्षत्र है जो सुबह 2:49 से 22 मई तक इसका योग है।

हाय श्रोताओं, अब मौसम का हाल जान लेते हैं। आज 21 मई 2026 को हिसार में मौसम मुख्य रूप से साफ और बेहद गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिन के समय लू चलने की पूरी संभावना है और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।

और श्रोताओं, अब आज का सुविचार। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के बदल जाने का दुख मत करो, क्योंकि ईश्वर अक्सर उन्हीं लोगों को दूर करता है जो तुम्हारी शांति छीन रहे होते हैं। जो तुम्हारे लिए सही हैं, वे बिना शोर किए हुए तुम्हारे साथ रहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, जिंदगी कभी भी मौसम की तरह स्थिर नहीं रहती। हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल मौसम के मिजाज की तरह बदलती रहती है। कभी धूप की तपिश से झुलस जाती है, तो कभी शीतल बयार से खिल उठती है। कभी दुख की आहट से घबरा

जाती है तो कभी सुख के सुकून से मुस्कुरा उठती है। जिंदगी का असली हाल बयां तो दोस्तों यही होता है। श्रोताओं, हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी का दूसरा रूप ही बदलना है। ये जीवन गिरगिट के रंग की तरह कभी भी अपना रूप बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, आखिर हम इंसान हैं। जब कोई हमारा बहुत करीबी हमें दर्द देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है और हमारे हृदय को ऐसी चोट पहुंचाता है तो हम सोच भी नहीं सकते तो ऐसे में हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है ये सोचकर कि आखिर मेरा ये अपना इतना कैसे बदल सकता है। श्रोतों, ये शाश्वत सत्य है कि जिस इंसान को आज तक आप अपना कहते आए हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते आए हैं और वो शख्स अचानक किसी के कहने से या किसी के बहकावे में आकर आपके लिए बदल जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, वो शख्स आपका अपना कभी था ही नहीं। जो आपका अपना होगा या आपका अपना है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। श्रोताओं, जिस किसी से भी आपने बेशुमार प्रेम किया, उस पर भरोसा किया, उस शख्स ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपका दिल तोड़ा और इन सब से ऊपर आपकी आत्मा को गहरी चोट पहुंचाई, तो क्या आप सोचते हैं कि उस इंसान ने भी आपको कभी चाहा था? अगर आप ऐसा सोचते हैं दोस्तों, तो गलत सोचते हैं। श्रोताओं, ये 100% सच है कि आपको चाहने वाला आपकी आत्मा को कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगा। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो यकीनन वो शख्स हमारा अपना कभी नहीं था। फिर दोस्तों, उसके बदल जाने से आपको अफसोस कैसा हो? आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, श्री कृष्ण उन्हें हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे सुख शांति में खलल पैदा करते हैं। श्रोताओं, यकीन मानिए, हमारे साथ श्री कृष्ण उन्हीं को रखते हैं जो हमारे अपने होते हैं। वो बिना शोर किए हुए चुपचाप हमारे साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। हम तो बस श्री कृष्ण के नाम के साथ आगे बढ़ें ये कहते हुए

आई श्रोताओ, अब रामचरित मानस के पद का वाचन करते हैं। बिसही नगर सुंदर नरिनारी, जनपहु मनसिज रति तनुधारी, तेहिपुर बसई सील निधि राजा, अग्नित हय गए सेन समाजा। अर्थात उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विषव मोही तासु कुमारी, शिव विमोह जिसु रूप निहारी। अर्थात उसका वैभव और विलास सो इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसकी विष मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए।

आइए दोस्तों, अब आपको एक प्रसंग बताते हैं। एक ऋषि लोटा रोज मांजते थे, यानी जो कलसी टाइप का लोटा होता है उसको रोज साफ करते थे, मांजते थे। एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुवर, लोटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार मांज लिया करें। ऋषि ने कहा, बात तो सही है, और फिर उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा, यानी साफ नहीं किया। उस लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य से कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को काफ़ी देर तक मांजता रहा, फिर भी उसकी चमक पहले जैसी नहीं ला सका, और काफ़ी देर मांजा तब कुछ चमक उसमें आई। ऋषि ने कहा, लोटे से सीखो, जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा ये रोज चमकता रहा, इसी तरह और हम इसे रोज मानते थे तो इसकी जो चमक है वो बरकरार रही। ऋषि बोले, इसी तरह भक्त होता है, यदि वह रोज सुमिरन न करे तो सांसारिक विकारों से अपनी चमक खो देता है, यानी खो बैठता है। इसलिए भक्त को रोज सुमिरन करना होता है। अगर एक दिन भी सिमरन छूटा तो भक्ति की चमक फीकी पड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु का नाम हमें हर रोज लेना चाहिए, उसके चरणों में हमें हमेशा अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, उसके चरणों में हम हमेशा नतमस्तक रहें, ये कहते हुए।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुप्रभात में बस इतना ही। अब अपने दोस्त क्षमा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, समाचार प्रभात के लिए हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के

0: इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने टीएमसी का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कांटेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी बीजेपी का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल सीआईएम का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और सीएम का कैंडिडेट है सोमनाथ पुरमी।
0: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्रमोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
6: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
9: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयास

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आप सभी को सविता सिंह का प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आए।
1: बंडी और बबली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, गुलजार की बोल थे, शंकर एहसान लॉय की तर्ज थी, शंकर महादेवन सौम्या राय और साथियों की ये आवाजें आपने सुनी इस गीत में।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें सुनिधि चौहान, उज्जैन मुखर्जी, नीलाद्री देवनाथ और साथियों की थी। राजशेखर ने इस गीत को लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का, ये लिया जाए बहुत छोटा सा ब्रेक।

ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट, विद्या गोपाल और यशिका सिक्का की आवाजों में आप एनिमी फिल्म का गीत सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों, आज इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। यह दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को उजागर करना, चाय के उत्पादन को बढ़ावा देना और इसके साथ जुड़े किसानों और श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्यस्थिति और कार्यस्थलों के प्रति जागरूकता फैलाना। दोस्तों, अलसाई सुबह हो या काम की थकान हो या फिर सुकून भरी शाम, चाहे अकेले हो, परिवार के साथ या फिर दोस्तों के साथ, चाय एक पेय पदार्थ नहीं है बल्कि ये हमारे अपनेपन का, बातचीत की मधुरता का और सुकून का प्रतीक है। चाय पीना केवल स्वाद या आदत नहीं, ये भावनाओं के जुड़ाव का भी हिस्सा है। सुनते हैं अब ये गीत।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: दोस्तों चाय की बड़े सुंदर रंग हैं और कई रंग हैं, लोगों की अपनी अपनी पसंद है, कभी ब्लैक टी अदरक वाली चाय और कभी कुल्हड़ वाली चाय, इन सब की अलग अलग मिठास है। कुल्हड़ वाली चाय तो हमारे सफर को ही यादगार बना देती है ना, शायद यही वजह है कि चाय हमारे दैनिक जीवन का सबसे लोकप्रिय हिस्सा बन गई है। बहरहाल अभी जो गीत आप सुन रहे थे इसे हमने सौतन फिल्म से लिया था, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें थी, सावन कुमार ने इस गीत को लिखा था, उषा खन्ना ने इस गीत की धुन बनाई थी और अब

दर्शन रावल और जोनिता गांधी की आवाजों में धड़क टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था और रोचक कोहली और साथियों ने इस गीत को संगीत से संवारा था। इसी गीत के बाद आइए एक बहुत छोटा सा ब्रेक फिर से लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।

दोस्तों, आज जन्मदिन है प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर ज़ारा, धूम, श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्बी जैसे फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: रब ने बना दी जोड़ी इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: चप्पत।
1: ऋत्विक तराशिलकर और साथियों की आवाजों में मलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे, जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छध्वम संग वदध्वम सम वो मनांसि जानताम, साथ चलें साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरी बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज

0: यही जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है, दूर जाना भी है। और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
1: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. They're gonna
0: pass the test. Don't look. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है।

0: आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
1: आप सुन रहे
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार। FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आपके लिए पेश है कार्यक्रम नमस्ते हिसार। लेकिन पहले ये आकाशवाणी हिसार के कुछ बेहतरीन प्रोमो दो बेहतरीन आवाजों में, आइए सुनते हैं।
4: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
5: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
6: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
5: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
6: हर मंगलवार शाम 5 बजे
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
7: अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
6: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
5: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
8: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
6: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
9: Will you be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison।
5: कोई कला में उत्कृष्ट है?
6: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
5: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
6: कार्यक्रम एक शख्सियत
5: हर सोमवार शाम 5 बजे
6: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: क्या आप परेशान हैं?
10: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
6: क्या आप खुश हैं?
11: आज मैं ऊपर।
5: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
6: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
12: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
5: या आप प्यार में हैं?
13: पहला पहला प्यार है।
6: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
14: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
5: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
6: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
5: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
6: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें।
15: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
6: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
16: मैं अल्लू बिल्ली घूमू अकेली।
5: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
17: अभी न जाओ छोड़ कर।
6: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
5: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
6: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
5: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
6: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: हर सुबह एक मौका है
6: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
5: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
6: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
5: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
6: आकाशवाणी हिसार के साथ।
18: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
5: सुनिए कार्यक्रम

दोस्तों, आपके एहसासों का, आपकी मखमली सुबह का हम सफर आकाशवाणी हिसार, आपकी ख्वाहिशों का सरताज आकाशवाणी हिसार और आपकी कोरी तमन्नाओं का मिजाज रंग आकाशवाणी हिसार आपकी पेश खिदमत कर रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

दोस्तों मोहब्बतें नए आगाज के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार लेकर हाजिर है आवाज की दुनिया की दोस्त क्षमा। हमारे सभी चाहने वालों को मोहब्बत से भरा नमस्कार।

तेरी यादों के साए में मेरा हर मौसम मिजाज हसीन हो जाता है। रह रह के दिल का हर समा मुझ पे प्यार बरसाता है। डरती हूँ ऐसे बहार मौसम से कि कहीं ये मुझसे तेरी इंतजारी घड़ियां न चुरा ले।

दोस्तों, समा प्यार का तो हो सकता है, लेकिन बाहर का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाहर तो चिलचिलाती धूप है और गर्मी से बेहाल हैं। और हम आपकी चाहत में कैसे कार्यक्रम दे रहे हैं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम फिर भी आपकी मोहब्बत की खातिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए आज भी हम बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत करें। यह आपकी दोस्तों चाहत है जो हमको आप तक खींच के लाती है, और हम चाहते हैं कि आपकी वानगी में, आपकी दीवानगी में हम भी आपके साथ हों। तो इसी बात पर कार्यक्रम का जो हमारा पहला पहलू है वो है खबरों का, हिसार के आसपास की स्थानीय खबरों के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं।

श्रोताओं, जीजू के हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस ने नए शैक्षणिक सत्र से एमबीए कोर्स में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को लागू करने की तैयारी कर ली है। छात्रमुख मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अपने पसंद के स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चुन और पढ़ सकेंगे। यहाँ नियमित कक्षाओं के जरिए भी मैनेजमेंट के विद्यार्थी इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस का कोई एक मनपसंद विषय पढ़ सकेंगे। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस में एमबीए की 240 सीटें हैं। दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मई तक किए जा सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 2 जुलाई को होगी। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 6 जुलाई तक जारी किया जाएगा।

आइए दोस्तों, अब मौसम की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम सभी को मौसम का हाल पता है, जिसने हमारा बेहाल कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, जिला प्रचंड हीट वेव और झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में है। राजस्थान के थार मरुस्थल की तरफ से आ रही पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाओं ने पूरे मैदानी इलाकों को तपा दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी का ये टॉर्चर और बढ़ने वाला है, क्योंकि तापमान में लगातार उछाल आएगा। 22 मई के दिन एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। आसमान में केवल आंशिक बादलबाई होगी, जिससे उमस और बढ़ेगी पर तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। 29 मई को भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की उम्मीद है। एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आ सकता है।

कि तपिश हमें सताती है तो कभी बहारों का मौसम हमें मुस्कुराने को वजह देता है। अब देखिए ना दोस्तों, आपके साथ जो पल बीतते हैं वो हमें मुस्कुराने की वजह देते हैं। आपका साथ है, आपकी मोहब्बत है, तो मौसम कैसा भी हो आपके साथ हमारा वक्त गुजर ही जाता है। और इस मौसम का हाल देखते हुए हम आपके साथ होते हैं, पास होते हैं, तो एहसास ही नहीं होता कि गर्मी भी है। भाई दोस्तों, यही तो सच्ची मोहब्बत की दास्तां है। और आप हमारे साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते स्टार, अपनी दोस्त क्षमा के साथ FM 102.3 MHz पर। तो कार्यक्रम का अगला जो सोपान है उसका इंतज़ार आपको है। भाई इंतज़ार की घड़ियां दोस्तों बड़ी मुश्किल से कटती हैं, लेकिन हाँ, इंतज़ार का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है। जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं, कोई हमारा इंतज़ार करता है, और जब मिलन होता है तो उसका सुखद एहसास हमें एक नई दुनिया में ले जाता है। कुछ ऐसा ही होता है ये एहसास। तो आइए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं आज के हमारे दो प्रश्न। उससे पहले हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताएंगे, 9729253272। नंबर एक बार पुनः सुनिए, 9729253272। हम आपसे दो सवाल करेंगे, आपको दोनों सवालों के जवाब हमें लिखकर भेजने हैं। जिस किसी श्रोता के दोनों जवाब सही हुए उस श्रोता की पसंद का गीत हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप हमें 2-3 गीत अपनी पसंद के लिखकर भेजें, उसके बाद लिखें फिल्म का नाम, उसके बाद लिखें अपने गांव और शहर का नाम, उसके बाद अपना नाम लिखें। हमारी बात याद रखिएगा। और एक बात और यहाँ कहेंगे, ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। आप हमें लगातार फरमाइश कर रहे हैं दोस्तों, हम आपसे बार बार कहते हैं कि ये फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है। हम इस कार्यक्रम में आपकी पसंद का गीत ऐसे नहीं सुनवा सकते हैं, क्योंकि जो हमें श्रोता जवाब लिखकर भेजेंगे उनके जवाब फिर पीछे चले जाते हैं और हमसे ये चूक हो सकती है कि उनका नाम छूट सकता है। इसलिए आप अपनी पसंद के गीतों की फरमाइश इस वक्त ना करें। तो आइए अब नोट कीजिए हमारे आज के दो सवाल। हमारा पहला सवाल है, देश में 1 रुपये का नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सवाल एक बार पुनः सुनिए, देश में 1 रुपये का नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? यह है आज का हमारा पहला सवाल। अब हमारा आज का दूसरा सवाल, कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की वह पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? सवाल पुनः सुनी, कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की वह पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आपको उनका नाम बताना है। मैं उम्मीद करती हूं आपने हमारे आज के दोनों सवाल बहुत अच्छे से सुन लिए होंगे, और अब हमें इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। तब तक आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म साजन से, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों कार्यक्रम नमस्ते हिसार आप सुन रहे हैं FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर अपनी दोस्त क्षमा के साथ। तो दोस्तों हमें मालूम है कि आप बड़ी बेसब्री से जो हमने आपसे दो सवाल किए थे उनके जवाबों का आपको इंतज़ार है और आप अपनी पसंद का नगमा भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको दो सवालों के जो उत्तर हैं वो बताएंगे। उसके बाद जिस भी श्रोता ने इनके सही उत्तर लिखे हैं उनका नाम हम आपको बताएंगे। हमारा पहला सवाल आपसे था, देश में एक रुपए का नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। और हमारा दूसरा सवाल आपसे था, कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की वह पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? इनका नाम है भावना कंठ। और दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें सही लिखकर भेजे हैं। ये पहला जो जवाब हमें मिला है, पहले से हमारा ये मतलब है दोस्तों कि ये दूसरा जवाब है। पहला जवाब हम बाद में बताएंगे जिनका उत्तर, दोनों उत्तर सही हैं और जिसकी पसंद का हम गीत सुनाएंगे। थोड़ा सा अंतर रह गया पहले और बाद का। ये है मंटू शर्मा, शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हमें व्हाट्सअप किया है और इनके दोनों जवाब सही हैं। तो मंटू शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई। और अगला जो जवाब हमें मिला है, यानी सबसे पहला जो जवाब हमें मिला है वो हमें मिला है उमेश सांगवान का, गांव पैंतावास कला तहसील जिला चरखी दादरी से। तो उमेश जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने हमें सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं। तो आपको बधाई देते हुए आपकी पसंद का जो नगमा है वो हम सुनवाते हैं। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, आज आपकी मोहब्बत को हम साथ ले जाते हैं फिर से एक नए अंदाज के साथ लौट के आने के लिए। तो आज अपनी दोस्त क्रमा को कार्यक्रम नमस्ते हिसार से इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार FM 102.3 MHz पर। लीजिए श्रोताओं, विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपको कुछ ही लम्हों बाद लिए चलते हैं।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना। संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स ये एल्बम का नाम है, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनुमलिका संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: पी बलराम की आवाज में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत

0: प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।
1: तने

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: देता है रे मुझे दे कल कल कल कल कल कल कल सीने से गिर के तेरा चल ताने बाहें खोले ऐसे ये मस्तानी बोले बोले जैसे दारू का गड़ा
1: अयो अम्मा मुझको एक तो वारी है ना
0: अम्मो मुझको एक तो

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अंजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: अरे पुरवा के झोंकवा में

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत की जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पाके तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना। तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम

0: हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है, जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम FM 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र। इंतजार के हल्के से पल हमारे साथ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विद्यालय आधारभूत संरचना की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सुझावों को स्वीकार करते हुए हरियाणा के सरकारी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्रमदान को अनिवार्य किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन, सहभागिता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। शिक्षा मंत्री के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएंगे। शिक्षकों के मोबाइल विद्यालय में प्रधानाचार्य कक्ष में जमा रहेंगे तथा शिक्षण कार्य के दौरान मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं प्रारंभिक अंग्रेजी विद्यालयों की शुरुआत की। वर्ष 2026-27 के बजट घोषणा के अनुरूप पहले चरण में चिन्हित 250 विद्यालयों का शुभारंभ किया गया। इन विद्यालयों को प्रधानमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और आदर्श विद्यालयों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ये विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित होंगे तथा इनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यालयों में आधुनिक संसाधन, बेहतर आधारभूत ढांचा, प्रयोगशालाएं, स्मार्ट कक्षाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिक बेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थी और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन का सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राज्य के सभी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त

0: व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे अपनी अपनी पार्टियों के लिए बूथ लेवल एजेंट एक व दो की नियुक्ति आगामी सप्ताह के अंदर करके मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सूचित करें, क्योंकि शुद्ध व सटीक मतदाता सूची तैयार करवाने में बीएलओ व बीएलए एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंडीगढ़ में अपने कार्यालय में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 15 जून से आरंभ किया जा रहा है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि राज्य में मतदाता सूचियों की मैपिंग का कार्य 64% हो चुका है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में मतदाताओं के सहयोग के लिए विधानसभा वार व जिला मुख्यालय पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संघन संशोधन कार्यों के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान करना राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सीएम विंडो पर मिली शिकायतों को तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक कर सीएम विंडो पर मिली शिकायतों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और मंडल आयुक्त इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव
2: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.3 MHz पर। आई श्रोताओ, विविध भारती के सदाबहार सुरीले कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपको लिए चलते हैं

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल, इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं, नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं, रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग। इस फिल्म का ये गाना है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो कोई शीतल बयार ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्म आया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना।

चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती? ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ,

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छूमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक, हाँ, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारी विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह, सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने की सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी और ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोंसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्म आया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिखते हैं कि मंजू जी भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिखते हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है। तो चलिए पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से

0: उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में गिर गया था तब भारत ने यूनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
3: India has recently launched
4: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
3: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू

0: करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंकतालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल

0: तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे, और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार. कैसे हैं आप
2: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार. और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बड़ा सा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के.
1: देखिए आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने.
2: इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
1: जी,
2: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है.
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है. लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर,
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में.
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं.
1: और
2: आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं
1: जी,
2: या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए.
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे. इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे. और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है.
2: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है. हर एक को होता है.
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई
2: वो बताए अपना.
1: हाँ,
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए.
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सोमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता है, इनकी सीड मदर कही जाती है
2: जी,
1: इनके बारे में. और बहुत खास दिन है भाई,
2: हाँ,
1: चाय दिवस. चाय की चुस्कियां तो लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता. और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको

0: चाहिए, चाय
1: चाय चाहिए,
0: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है। दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले ही बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो है वो अपना आलम मान देती है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में
0: बात करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपड़े की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कुंभाल्डे की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपड़े का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंबले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गाँव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपने बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान असुनपन प्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपड़े जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4थे साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चेट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक

0: कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं उतना केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देशी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के बाद लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं, और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है। और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की प्याली अगर मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे। पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की जो चाय पीने की आदत जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन आप घर के उसने उस चाय नहीं पिलाई चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: भाई कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं। और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में रिसेंट जोड़े तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा।
0: और पौराणिक कथाएं है ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन हाउ ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्याली चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहाँ लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे ना।
1: वो चाय की चुस्कियाँ चलती रहती हैं, चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानी, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े सब का हल निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती है फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं सदियों से

0: बहुत तरह तरह के स्वाद से और भिन्नी भिन्नी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक गीत भी सुन लेते हैं।

0: भाई हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय की कितना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों हो गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है. ये तो हम

0: कहेंगे
1: चाय की बात और भारत की बात ना ऐसे कैसे होगा।
0: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
1: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया। तो ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पर। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
1: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देशों में होता है जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
0: स्वादिष्ट मिलती है
1: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
1: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो जाए।
0: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि आप बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज
1: की, अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं, तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी, जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा ना वाह,
0: क्या बात है
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर जिंजर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा

0: एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई, चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है,
1: चाय की पहले भी करवा लिए जाते हैं।
0: कप चाय मिल जाने पे
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: क्या बात है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है।
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही, चलिए गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: पे हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षोता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने, आप दोनों बहनों को दो कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती है। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक दे। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके तीन प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती है कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा, ये क्यों ऐसा हो रखा, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती। और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन खारे पानी के संपर्क के साथ साथ

0: तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है, और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
1: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही है
2: बिल्कुल जाना है
1: शुरू होने वाला है और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइटिस का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और अपनी आंखों

0: ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
1: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
0: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से इजाजत। हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री एनएन दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती है जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी, और ये टास्क बीएसएफ को दिया गया था। और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया, और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड में वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन
0: जी,
1: जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ही संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
0: बिल्कुल
1: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: इतना बड़ा आतंकवादी और
1: इतना बड़ा आतंकवादी,
0: सब
1: भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। बीएसएफ की बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
0: जी।
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी।
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा और हमने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन जो ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
0: जी
1: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
0: जी
1: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा एनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
0: बिल्कुल
1: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
0: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
1: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं कहीं
0: कुछ बड़ा
1: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था
0: बिल्कुल,
1: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
0: बिल्कुल
1: एक डिफिकल्ट एनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
0: 36
1: कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन, कॉन्टिन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को
0: डिजाइन बनाया
1: था, डिजाइन अच्छा। किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट ड्रिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तुमको इल्म ही नहीं था
0: बिल्कुल।
1: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था। और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा 3:45 मॉर्निंग। उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जम करके अंदर घुसे, हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
0: भागने की कोशिश करे,
1: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
0: अच्छा।
1: जो कि उस मकान में इंकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे, मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इंकाउंटर हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने, तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया है बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
0: अच्छा।
1: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फिरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
0: कुछ भी नहीं,
1: लग रहा था खाली है, और वो सीसीटीवी से हमको देख रहा था जिसका हमको इल्म नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था।
0: अच्छा।
1: पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
0: अच्छा।
1: अगर ये उसको जरा भी पता होता
0: तो शायद
1: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
0: ओके।
1: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
0: ज्यादा होती,
1: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत को ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
0: अच्छा।
1: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
0: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
1: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोली।
0: अच्छा।
1: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां यह था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं, और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती, पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए, बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी,
0: कितनी
1: गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा, वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
0: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं पाया,
1: आप उस वक्त सिर्फ हाथ का अंदाजा,
0: सिर्फ हाथ का,
1: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा।
0: जी।
1: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा।
0: जी।
1: डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया।
0: जी सर, हम इसकी बात जिसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011 2342 1084 और 2342 1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले, सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरी रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना रेडियस मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई, उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है कमेंडेशन।
0: अच्छा। जी जी,
1: मैं अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पर कंप्लीट बस्क लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसे ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहां क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमिन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो बड़ा पूरा, ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं। लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए, तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड सन यूनिफॉर्म को जब धो रहा था, तो पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और इंसिग्निया है जिसको एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने आपका दिल बचाया।
1: यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी जी जी।
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके

0: बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका की तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
1: जी।
0: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन टूट सर्जरी जब डायरेक्टर जनरल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा था
1: जी।
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन एक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री, होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया। सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी।
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
1: या उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी, कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेज,
1: बिल्कुल
0: इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो
0: करिए नमूने पेश करता। मोर देन 9 ईयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वॉज एन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग, दिस सारी मर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जे एन के असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001। तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता। तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ की, उन्होंने इतने बड़े एम्बेसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सब मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज जो आपके सर पर सजा है,
0: मैं ये देता हूँ क्योंकि बीएसएफ टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल।
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर वो जो फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए
0: जी, तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था। मैं चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल।
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस,
1: मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल।
0: गाजीबाग के माध में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं,
1: मिलता नहीं।
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी
1: जाने
0: की खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो। एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
1: देखिए सर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: सो ग्रेट वर्ड्स, बिकॉज वी स्टिल रिमेंबर द ब्लडशेड इन ऑस्ट्रेलिया, द बॉडी बीच वेरी रिसेंटली बाय द आईसी, बाय द आईसी स्कॉडर्स। हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई

0: के दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एन एन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी बच्चन,
0: हाँ
1: अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है
1: वो आपकी यादगार।
0: काम में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपकी मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही
0: एक्चुअली फिल्म
1: अनबिलीवेबल,
0: काफी उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है, कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूवरशिप के लिए बनती है।
1: सर एक चीज लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते हैं।
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब नहीं कि रीटेक होता क्या है,
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी,
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं,
0: या तो दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
0: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं अपने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
1: और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी,
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही है, जय हिंद सर आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बीके दत्त
1: जी,
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूं कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच।
1: सर देश पर मर मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हो, जब आप मौजूद होते हो, जब आप पूरे देश को पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहां पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर, हम आगे और भी बात करेंगे। हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा, मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा। आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर। मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है जी, के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है। जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट अच्छा। एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: मैसेज
1: आया था।

0: 15 दिन बाद बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई तो वो पहले है,
1: पहले
0: तो होगा मजबूर, मुझे उसने बुलाया होगा।
1: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस का हम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIGBSF श्री नरेंद्र नाथ दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानी सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चोरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं।

0: पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
1: पढ़ाई के लिए
0: देती थी।
1: अच्छा,
0: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम आपको तैर के जाना है, तो इतनी मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था
1: जी।
0: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में
1: अच्छा
0: थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
1: दादाजी।
0: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
1: जी
0: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
1: जी,
0: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए
1: जी।
0: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फॉरवर्ड के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
1: जनसेवा।
0: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
1: चाटाई
0: पर बैठ के सुनाते
1: अच्छा।
0: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
1: जी,
0: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
1: जी,
0: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते थे, और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर को जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
1: जी।
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पर आपको काम करने का मौका देता है, और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पर आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है, और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है
1: जी। सर, ये तो हुई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपके और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
1: जी,
0: 26-11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
1: जी,

0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए क्रिएट हुई और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
1: सरकारी। तो 25 साल जो सर आपने बीएसएफ में दिए उसके अलावा?
0: उसके अलावा ये 9 वर्ष एनआईए में,
1: अच्छा
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
1: जी, जी,
0: और कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
1: अच्छा
0: मेरे दिल से लगा हुआ है। मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
1: अच्छा
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है,
1: कोर एरिया है
0: जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, एफएम रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए। बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी
1: बिल्कुल।
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी
1: okay.
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
1: जी।
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
1: जी, जी, जी,
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है। बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
1: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। डीआईजी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल है आप नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है,
0: क्या बात है, क्या बात।
1: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
0: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, जज्बाती हैं
1: बिल्कुल,
0: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
1: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहां पर भी आप जरूर अपने
0: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्स से बात करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, अगला प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के नाम संदेश। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम

थारी मारी पसंद कार्यक्रम सुननी है सारे बन भाइया ने। आजाद भाई की राम राम। गर्मी का मौसम दिन में ताती लू चाले, गरते जब भी बाल न जा सर पे पड़ना अंगोछा, साफा जरूर रखें, कोरे पेंडे का पानी पीवे और लू ते बच के रहें, अपने सेहत स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। और भाई आज ये वीरवार थारी मारी पसंद कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं किस्से की बात हर रागनी के साथ। कार्यक्रम की पहली रागनी किस्सा नौटंकी माते। कलाकार रहेंगे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और साथी। जब हुआ बालन आर ने लेके नौटंकी के पास जाहे, आर ने देख के नौटंकी खुश होगी और कहने लगी, आए मालन यू आर किसने बनाया? मालन कहने लगी, या तुम्हारा घरा बहू ने बनाया है? नौटंकी बोली, मैं तो उससे मिलना चाहूंगी। और उसने मारे दौरे बुला के लिया। और वह मालन जब उसने लेके गई और नौटंकी उसके रंग रूप को देख के बहुत प्रभावित हो जाए, हर नमली बेबे मैं तो अपनी धर्मबाण बनाना चाहूंगी, मेरे दौरे रखूंगी। उस मौके पे वह नौटंकी मालन ने के कहे, उस मौके की बात वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरी और साथियों की आवाज में।

ही महल में और नहीं कोई दूजा।

0: रानी का नाम था रूपवती, जो बड़ी नेक पतिव्रता शील स्वभाव की थी। राजा के दो बेटे रूप और बसंत रानी बीमार हो जाए। एक दिन रानी लेटे लेटे घोंसला देखे जिसमें एक चिड़ा, एक चिड़िया और दो बच्चे। एक दिन चिड़िया बीमार होके सौर से दार जाए तो चिड़ा दूसरी चिड़िया ले आया और दूसरी चिड़िया ने वो दोनों बच्चे मार दिए। तो रानी के मन में ये सवाल उठ गया कि अगर मेरे मरने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली तो मेरे दोनों बालका की ब्रान माटी कर देगी। तो रानी रूपवती राजा खड़क सिंह को मरने से पहले क्या कॉल करार करती है, उस मौके की बात सुनील दुजानिया और साथियों की आवाज में।
1: एक चिड़िया का दो बच्चे थे, वह शोक दूसरे

0: कार्यक्रम की अगली रागनी की सा कृष्ण सुदामा में थे। कलाकार रहेंगे मुनिकर पावड़िया और साथी। जब सुदामा के टोटा आ जा है, घर में कुछ भी सौदा नहीं रहा, तो मिश्राणी कहने लगी, गरा नाज का दाना भी कोन्या, सारा कुणबा भूखा मन लाग रहा, और कृष्ण तेरा पुराना साथी, जा कुछ मांग लिया। सुदामा कहने लगा, मिश्राणी आज कोई किसी का नहीं, मतलब का सौदा है, मिश्राणी नहीं मानती। मिश्राणी बोली, जा तू एक बार कृष्ण जी के पास जा, किमन किमें तो जरूर देगा, जाके तो देख। मिश्राणी सुदामा को क्या कहती है उस मौके की बात मुनिगर पावड़िया और साथियों की आवाज में।
1: देखे कृष्ण

बताइए मैं इतने सारी से संकट का तक कोने आना दुख रखता न देख हमें सुन के बानी मन में ठानी।

गुरु बलवत संग जब चला रंग, गुरु बलवत संग जब चला रंग, आपस में मुलाकात होगी गड़क के लाले वो पास बैठा ले, मीठी मीठी बात होगी वो सबका प्यारा तो न

कार्यक्रम की अगली रागी की सा उत्तानपात में थे। राजा उत्तानपात जब दरबार आए तो रानी सुनीति आसन पाटी ले पड़ी थी। जब राजा ने कारण पूछा तो रानी कहने लगी, मेरा तो मारा घरा जानने जी करे है। रानी सुनीति न्यू बोली, मैं एक बार मारा घरा सनेतगढ़ जाया और अपनी छोटी बाण का डोला मांग लाऊंगी। राजा उत्तानपात कहने लगे, रानी अवधपुरी ते सनेतगढ़ 5 दिन जान के 5 दिन आन के 5 दिन उड़े ठहरन के घना लंबा टाइम हो जाएगा। और राजा उत्तानपात सुनीति को जानते मना कर दे है और कहे कि इस उम्र में बोली बातों में कुछ नहीं दरिया। राजा उत्तानपात रानी सुनीति को क्या समझाता है उस मौके की बात नरेंद्र सिंह और साथियों की आवाज में।

देख ली।

0: कार्यक्रम की अगली पेशकश किस्सा कृष्ण जन्म माते। जब वासुदेव महाराज देवकी के साथ शादी के लिए बारात लेके आते हैं, इतने में कोण के आकाश से आकाशवाणी होती है, देवकी की कोख से पैदा होने वाला श्री कृष्ण एक दिन कंस का वध करेगा। ये आकाशवाणी सुन के कंस गुस्से में भर जाए और देवकी को केस पकड़ के फर्श पर गिर ले है और उसे मारने के लिए तेगा निकाल लेता है। वो देवकी रोती बिलखती अपने भाई से अपनी जान की गुहार लगाती है, पर वो कंस मानता नहीं। देवकी अपने भाई कंस को क्या कहती है, उस मौके की बात मास्टर सतवीर बैसवालिया और साथियों की आवाज में।
1: एरे मचन्या मारे तेग बिगड़ जा नेग बाण का

अरे खरे हजारों लोग मान रे सोग बटे उठारे बसम उठरा के माँ

ఏరి సూర్య సేనక కుటుంబ మానత హుకమ లడాయి ఓ జా గలజ్యాగా

ऊट माच जा लूट लौटाई हो जा सनैया दुवंश के तीर सफाई।

0: कार्यक्रम की अगली रागनी की सा नर दमयंती माते, कलाकार रणबीर बड़वासनी और सरिता चौधरी। राजा नल जुए में सब कुछ आर्जा है और दमयंती के साथ जंगल में चाल पड़े हैं। दूर तो एक कुटिया नजर आई, बड़े तीन दिन ठहरे भूखे और तसाए, नींद कौन से ने नहीं आवे। राजा नल कहन लगे, दमयंती तू थकी आ रही है, और देख मेरे कारण तने के माड़े दिन देखने पड़े, तू सो जा। दमयंती कहे, कोई बात नहीं, आप सो जाओ, पर पेट तो दोनों भूखे, नींद कौन से ने नहीं आवे। उस मौके पे राजा नल और दमयंती के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं, उस मौके की बात रणबीर बड़वासनी और सरिता चौधरी की आवाज में।
1: हे रे तू सो जा दमयंती से, जन्म भर की रथ की हार।

के लालच में जमींदार तने बेच नहीं दे, वो बड़द वो बैल वो गऊ का जाया अपने उस किसान ने किए के है। उस मौके की बात राकेश कलोईया और साथियों की आवाज में।

ये सुना भाई आपने थारी मारी पसंद कार्यक्रम के अंतर्गत किस्से की बात हर रागनी के साथ। आज का थारी मारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने के अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति सारे बन भैया ने। राम राम।

0: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।
1: कानूनी मदद और सलाह दिलाते, चले लो हमें सही राह दिखाते।
2: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
3: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम थारी महारी पसंद FM 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल

0: डिजिटल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि यह सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिनका रिले हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे केंद्र से आज शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 6:20 पर। कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 6:30 पर। साय 7 बजे कार्यक्रम किसानवाणी प्रसारित किया जाएगा और आज कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत होगा फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय रहेगा कपास की फसल में कीट प्रबंधन। किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राम कुमार। कार्यक्रम महरेगांव सुनेगा साइंस 7:30 पर। इस कार्यक्रम का विषय रहेगा बढ़ती हुई गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के लिए जल व्यवस्था। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तरानी। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर और राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आप सुन सकेंगे रात्रि 9:00। ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 से रात्रि 10:00 तक आप विविध भारती मुंबई के प्रसारण सुन सकेंगे। आज रात 10:00 आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम राष्ट्रीय हिंदी समाचार रात्रि 11:00 और 11:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आइए अब जानते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 5:53 पर हमारे केंद्र की प्रातःकालीन प्रसारण सभा शुरू होगी। कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 पर और 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्ते हिसार का समय रहेगा प्रातः 10:00। कल साय 5:00 आप सुनिएगा कार्यक्रम हेलो हिसार। कार्यक्रम भक्ति संगीत साय 6:20 पर और साय 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना सेती। कार्यक्रम महरेगांव का समय रहेगा 7:30 पर और कल रात्रि 8:00 आप सुनेंगे पंजाबी गीत और कल रात 10:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। ये कार्यक्रम आधारित होगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 अहम समझौते हुए। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया, देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, अफरा तफरी में खरीदारी की जरूरत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। हरियाणा की पूरी मतदाता सूची संशोधित की जाएगी। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 12 नए पाठ्यक्रम शुरू किए और उचाना से विधायक दिवेंद्र चतुर्भुज यात्री ने राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर

0: किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने आज कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के तौर पर देख रही है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा दिखाती है कि भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 अहम समझौते हुए, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात का भारत में 75 से 100 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा भी शामिल है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि श्री गांधी की नकारात्मक राजनीति की वजह से लोग चुनावों में कांग्रेस को नकार रहे हैं। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार मौजूद है। आज नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर मंत्रालयों के बीच हुई एक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा,
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है। लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है, जबकि 1 मई से अब तक वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति 1,32,000 टन रही है। प्राकृतिक गैस के बारे में उन्होंने बताया कि पीएनजी कनेक्शनों का विस्तार हो रहा है। मार्च से अब तक 7,60,000 से ज्यादा घरों को इससे जोड़ा जा चुका है। साथ ही 2,81,000 पीएनजी कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत पिछले कुछ दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरीक्षण, जुर्माना और नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अफरा तफरी में ज्यादा खरीदारी न करने की अपील की। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए श्रीनिवास ने कहा है कि मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 15 जून से 14 जुलाई तक होने जा रहा है और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर को किया जाएगा। श्री ए श्रीनिवास आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश की पूरी मतदाता सूची संशोधित की जाएगी।
2: 14 मई को सर्कुलर में हरियाणा का SIR डिक्लेयर हुआ है, जो क्वालिफाइंग डेट 1 जुलाई से मानते हुए हम पूरा जो इलेक्टोरल रोल है हरियाणा का इसको कम्प्लीटली रिविजन करेंगे, जिसको हम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन कहेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन हर 20 साल में होता है, पिछली बार 2003 में हुई है और इस बार 2026 में हो रही है। जैसे हर साल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन तो होता ही है, बट अदरवाइज ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम एन्यूमरेशन फॉर्म्स के तहत इलेक्टर्स का नया तरीके से पूरा लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए आयोग ने बहुत डिटेल्ड शेड्यूल बनाया है।
0: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है, उनकी बूथवार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि जनता की इन सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गणना फॉर्म वापस नहीं मिले हैं, वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत लोगों की पहचान कर रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। BLO को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे BLO को सौंप सकता है। एक सवाल के जवाब में श्री श्रीनिवास ने बताया कि सभी जिला मुख्यालयों और निर्वाचन क्षेत्रों में एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1950 दिया गया है। यह हेल्पलाइन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 2 पालियों में काम करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने उच्च गुणवत्ता वाली कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए इस वर्ष 12 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इसके साथ विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की संख्या 70 हो गई है। कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने आज पलवल में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इनमें डी फार्मा, बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, बी वोकेशनल एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, बी वोकेशनल प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, बी वोकेशनल इंटीरियर डिजाइन, बी वोकेशनल फ्रेंच, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, LLM शामिल है। उन्होंने फिजियोथेरेपी कोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि नए पाठ्यक्रम कौशल और रोजगार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: उसकी आराम से वर्किंग, उसकी अर्निंग चल जाती है, तो वो कई बार दो दो तीन तीन चार चार घरों में जाके भी फिजियोथेरेपिस्ट अपनी इनकम करता है। तो ये कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम इस बार शुरू कर रहे हैं। बैचलर फार्मेसी हमने शुरू किया है जो 4 साल का प्रोग्राम है और लगभग 60 के करीब सीट है। उसमें भी हमारी अच्छी प्लेसमेंट रहेगी, चाहे तो बच्चे बी फार्मा करने के बाद में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ये तीन तरह के जो तीन नए कोर्सेज जो मैंने बताए, ये अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाले हैं हमारे पलवल एरिया के लिए।
0: उन्होंने बताया कि इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बीएससी नर्सिंग और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी शुरू किए गए हैं। बहुत जल्दी ही इनकी मान्यता हमें मिल जाएगी। इन पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर उन्होंने बताया,
3: और ये भी बताऊंगा कि जो सारे प्रोग्राम शुरू करने के लिए टीचर्स का अपॉइंटमेंट के लिए भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। अखबार में हमारी एडवर्टीजमेंट आने वाली है जिसके माध्यम से लगभग हम 50 फैकल्टी मेंबर परमानेंट यहां अपॉइंट करेंगे जो कि हमारे नए कोर्सेज चलाने में हमारी मदद करें।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव बकाली में खेत के रास्ते के बीच में खंभे और ट्रांसफार्मर लगाने वाले एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की जांच लड़वा के एसडीएम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के लाडवा के शिवाला रामकुंडी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को धमकी देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों को कहा कि सभी नागरिक शिकायत पत्र पर अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखें ताकि विभाग उनसे संपर्क कर सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 338 शिकायतों को सुना। उचाना से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज यात्री ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि निजी वाहनों का कम से कम उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सरकार और पार्टी कार्यकर्ता लगातार ईंधन बचाने के अभियान से जुड़े हुए हैं। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने पर उन्होंने कांग्रेस नेता की आलोचना की।
4: राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, ये हमारे जो 144 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। पहले भी सबक सिखाया है हमारे देशवासियों ने, अब भी आगे भी सबक सिखाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसकी घोर निंदा आप लोग कर रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा, भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 अहम समझौते हुए। केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया, देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार, अफरा तफरी में खरीदारी की जरूरत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया। हरियाणा की पूरी मतदाता सूची संशोधित की जाएगी। पलवल के श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने 12 नए पाठ्यक्रम शुरू किए और उचाना से विधायक देवेंद्र चतुर्भुज यात्री ने राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत एफएमएंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी भाग 1289।

0: इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
1: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
1: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
1: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
1: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विघ्नेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
1: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी,
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी,
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरिंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओं, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न

0: हैं मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी।

0: उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़ी से कह दी। बोली,
1: देखो कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़िया और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वे बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं।

उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।

0: भाई क्या करूं क्या करूं भाई क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
0: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: ला ला ला।
1: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
2: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
2: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर।

0: नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर।
1: और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
2: दादी माँ, दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
0: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
2: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
0: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
2: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
2: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
0: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
6: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
7: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटे और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
8: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
7: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
8: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
7: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
8: बिल्कुल सही कहा अटकू।
9: इसे काट। भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
8: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
6: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
10: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
7: अच्छा चलो कोई और।

0: ढूंढते हैं हार्ट को। चल आगे चलते हैं।
1: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
0: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
1: वो उसे काटने लगे।
3: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
0: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
1: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
4: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
1: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
1: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
6: पेड़ हमारे दोस्त हैं। जीवन में हरियाली लाओ,
7: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
8: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM 102.3 MHz पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत फोन इन प्रोग्राम, जिसका विषय रहेगा कपास की फसल में कीट प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर राम कुमार।

0: बीमारी लग जाती है, या कई बार सूखा पड़ जाता है, या कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, हमारी या फसल है, कीट प्रबंधन हमारे किसान भाई क्यों कर रहे हैं। तो जाना संदीप भाई डॉक्टर साहब से इसकी जानकारी।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: हाँ जी, इस समय किसान भाइयों चूरड़ा का प्रकोप है कपास की फसल में। चूरड़ा जिसे थ्रिप्स कहते हैं और किसान भाई जू भी कहते हैं इसे, तो इसका सबसे आसान उपाय है कि आप नीम की दवा का स्प्रे करते रहें तो ये काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, रस चूसने वाली कीड़ों को मारने वाली दवा है, जैसे रोगोर है, और इस समय तो हमारी फसल काफ़ी छोटी है तो बहुत थोड़ी दवा से काम चल जाएगा। 100 लीटर पानी में केवल 150 मिलीलीटर अगर हम डाइमिथेट यानी रोगोर का स्प्रे कर दें तो ये चूड़ा कीड़ा बिल्कुल काबू में आ जाएगा।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने चूड़ा कीड़ा की बात बताई कि हम इसको कैसे काबू कर सकते हैं, और फसल में ये कितना नुकसान पहुंचा सके डॉक्टर साहब।
2: ये काफी नुकसान कर सकता है। देखो, ये जो कीड़ा है इसको खुश्की पसंद है, जितने वातावरण में खुश्की रहेगी उतने ही ये फलेगा फूलेगा। इसलिए इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसका वातावरण से क्या संबंध है। अगर वातावरण में खुश्की बनी रहती है तो कीड़ा भारी संख्या में फसल पे आएगा, और ये पत्तों को खुरसता है, उससे रस निकलता है जिससे पत्ते मुरझा जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, और कई बार ज्यादा प्रकोप हो जाए इस कीट का, थ्रिप्स का, तो पत्ते सूख कर गिर भी सकते हैं, तो इतना भयंकर नुकसान कर सकता है। तो ये बहुत, अगर मौसम खुश्क रहे, लंबा खुश्की चले, बारिश ना हो, तो ये पत्ते झड़ने की भी नौबत आ सकती है, इतना सुखा देता पत्तों को, तो काफी सीरियस हो जाता है। लेकिन प्राय क्या होता है कि बारिश बीच में हो जाती है तो इससे इसकी संख्या कम हो जाती है, एक दो अच्छी बारिश हो जाए तो वैसे ये खत्म हो जाता है, लेकिन बारिश ना हो तो फिर ये शेर है, फिर ये बहुत नुकसान कर देता।
0: तो डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे किसान भाइयों तक बता दें, हाँ आज का हमारा विषय है, क्योंकि कई बार हमारे किसान भाई खेती बाड़ी के काम धंधे की बात हो या पशुपालन की बात हो, इस टाइम पे देखो सारे काम इकट्ठे हो गए हैं, तो भाई उसके रेडियो थोड़ा हाँ देरी से चलाऊं। तो किसान भाई आज का जो हमारा विषय है वो है कपास की फसल में कीट प्रबंधन, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर राम कुमार जी, जो कि प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं कीट विज्ञान विभाग में, रिटायर्ड डॉक्टर साहब, और जो हमारा फोन नंबर है वो है 01662978827। इस नंबर पर हमारे किसान भाई फोन करके अपनी समस्या का समाधान जान सके हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री पवन कुमार जी, और जो तकनीकी सहयोग की अगर हम बात करें, रतन सिंह जी और अमर सिंह जी इसमें तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। सारे बण भाइयों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब अब अगर हम बात करें, देखो जो दीमक की समस्या है, फसल हमारी कोई भी क्यों ना हो, हर फसल में दीमक की समस्या देखने मिला है, तो कपास की फसल में भी कुछ ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब।
2: आदि
0: हेलो हेलो, डॉक्टर साहब फोन आ गया है।
2: हाँ जी,
0: हेलो
2: हाँ जी,
0: हेलो डॉक्टर साहब, फोन कट गया है। तो आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब दीमक की समस्या की।
2: दीमक के लिए के खेत में।
3: हेलो,
0: हेलो,
3: राम राम जी।
0: राम राम जी, आप कौन बोल रहे हैं?
3: जी, मैं जोगिंदर बोलूंगा खेड़ा से। जी,
0: जोगिंदर भाई आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो।
3: ये कह रहे थे जी, जुगरा कपास का नहीं जी है,
0: हाँ जी,
3: ये जो गुलाबी सुंडी हुआ है इसका क्या प्रबंधन करा जी?
0: डॉक्टर साहब अभी बता देंगे समस्या का समाधान, तो डॉक्टर
2: हाँ
0: साहब बताओ।
2: अभी बताएंगे। किसान भाइयों, ये जो बीटी कपास आई थी ये सुंडियों के विरुद्ध इसमें शक्ति थी लड़ने की, लेकिन अब धीरे धीरे सुंडी में बीटी जीन को सहन करने की सहन शक्ति आ गई है, यानी कि बीटी बीटी का असर कम हो गया है। तो अब ये लगातार कई साल से, 5-6 साल से आ रही है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सुंडी को बढ़ावा देती हैं उन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना होगा, जैसे जितनी पछेती हमारी फसल होगी तो उतनी ज्यादा सुंडी आएगी, तो क्या करना होगा, अगेती बिजाई

0: करें, और दूसरा ऐसी हाइब्रिड या किस्म लगाएं जिसमें जो जल्दी जिसमें फल आता है जल्दी वो पक के तैयार हो जाती हैं। तो एक तो ये बात है, जितना जल्दी फसल पकेगी उतनी हमारी फसल सुंडी के प्रकोप से बच जाएगी। दूसरी बात है
1: जी
0: कि जितनी ज्यादा खेत में नमी होगी उतनी
1: हाँ
0: ज्यादा
1: जी
0: सुंडी आएगी। तो नमी को कैसे कम करें, एक तो लाइन से लाइन की दूरी बढ़ाएं। पहले जरूरत
1: हाँ
0: नहीं
1: जी
0: थी,
1: हाँ
0: पहले तो जैसे 3.5 फुट काफी था, लेकिन अब 4.5 फुट लाइन से लाइन की दूरी करनी होगी ताकि खेत में नमी कम बने। और लाइनों की जो दिशा है पूर्व पश्चिम में करें ताकि खेत में हवा निकलती रहे, धूप लगे, नमी कम बने। और
1: जी
0: तीसरा जो नमी बनने का कारण है कि हम जैसे ज्यादा पानी लगा दें बार बार या यूरिया का अधिक इस्तेमाल कर दें तो भी हमारी फसल बढ़वार लेगी, बढ़वार लेने से वो झुकेगी तो खेत में और ज्यादा नमी बढ़ेगी। तो इन
1: तो
0: चीजों से हमें
1: यूरिया तो
0: बचना।
1: डालते ही नहीं जी।
0: हाँ, लेकिन पानी बहुत लगा देते हैं किसान कई बार।
1: एक बात हो रहा जी, आपने ये जो इंसार यूनिवर्सिटी के नहीं है
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: हाइब्रिड बीज जाया कर दे, या फिर वो पहले देसी बीज कड़िया मिलते कुछ बाजार में अवेलेबल है कुछ नहीं।
0: ऐसा है, ये जब बीटी की तरफ अपना 95% से भी अधिक एरिया बीटी कपास में आ गया तो उसकी डिमांड नहीं रही, तो इसलिए बीज नहीं मिला क्योंकि सभी किसान बीटी की तरफ चल पड़े। तो
1: 2 साल पहले मिल गया था जी, एक बार वो सिरसा यूनिवर्सिटी का, और
0: अच्छा जी,
1: उस मामला फिर ट्रेसर के स्प्रे मारे थे। ये बताओ जी, ये ट्रेसर जैविक दवाई है के जी? सेफ
0: जैविक नहीं है, सेफ है। जैविक तो
1: है जी।
0: वैसे तो ये एक बैक्टीरिया है, उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन
1: हाँ जी
0: इसको ट्रू सेंस में हम जैविक नहीं कहते क्योंकि इसके और भी साइड इफेक्ट हैं। तो इसलिए ये सेफ दवाई है, यानी कि हरे ट्रायंगल की है, ये चढ़ेगी नहीं दवाई, ये इसका फर्क
1: हाँ
0: है और
1: जी
0: सुंडियों के प्रति काफी कारगर है।
1: हाँ जी।
0: तो
1: तो उस साल तो हमारा बढ़िया होगी थी जी, नरमा जो कराऊंगा देसी बीज मिल गया था नहीं, और
0: हाँ, तो
1: जिस साल भाई बीटी लगाऊंगा इसका भी है तो फर्क उतना कौन जितना उस पौधा फिर वो बीज नहीं मिलता।
0: नहीं, मेन बात आप ये करो कि खेत में नमी कम बने, हमारी
1: हाँ
0: फसल की
1: जी
0: जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 6 फुट से ज्यादा ना हो,
1: हाँ
0: पौधा
1: जी
0: सीधा खड़ा रहे। जितना
1: हाँ जी
0: पौधा ज्यादा हाइट लेगा वो टिंडों के बोझ से झुकेगा, झुकने से खेत में नमी बढ़ेगी, नमी बढ़ने से क्या होगा, सुंडी ज्यादा आएगी और वहां पे स्प्रे भी नहीं पहुंचेगा अगर खेत पौधे झुक गए खेत में। तो
1: हाँ
0: नमी
1: जी
0: कम करनी है और पानी का बिल्कुल कंजूसी से प्रयोग करना है। पानी के जैसे अब जैसे लू चलती है, पौधा
1: हाँ
0: शाम
1: जी
0: के समय मुरझा जाता है, लेकिन
1: हाँ जी
0: अगर
1: ठीक
0: वो सवेरे ठीक हो जाता है तो अभी पानी की जरूरत नहीं है। अगर सवेरे भी
1: है जी।
0: मुरझाए मिले तब पानी देना, इससे पहले पानी नहीं देना, उससे क्या
1: अच्छा
0: होगा
1: जी,
0: कि
1: ये
0: ज्यादा
1: पर
0: बर्बाद मिले।
1: किन्नू का बाग है जी, इसमें वो पानी लगाएं या ना लगाएं?
0: देखो ये तो बागवानी की फसल है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज
1: जोगिंदर भाई, आज का जो हमारा विषय है वो है कपास की फसल में कीट प्रबंधन।
0: अच्छा जी, फिर मूंग की बता दो जी, इन्हें भी इस दिन भी जाना है।
1: जोगिंदर भाई, इसके लिए हम अगला जो भी कभी प्रोग्राम होगा हमारा फोन इन कार्यक्रम, उसमें इसकी जानकारी दिलवाएंगे, क्योंकि आज का जो विषय विषय से हटके सवाल आज हम आपको नहीं बता सकते। तो आपने जोगिंदर भाई फोन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया किसान भाइयों की जो ये गुलाबी सुंडी की बात करी है, हाइब्रिड किस्मों का प्रयोग किसान भाई ने करनी चाहिए, और खेत में कम से कम नमी रहे इस चीज का ध्यान रखें, और सही समय पर बिजाई करें तो ही किसान भाई इससे बच सकेंगे। डॉक्टर
0: हाँ जी,
1: साहब,
0: हाँ जी,
1: तो डॉक्टर साहब आप दीमक का जिक्र करने लग रहे थे।
0: आज दीमक एक तो ये कहूंगा जो हमारे उसमें खाद जो
1: हेलो
0: गोबर की खाद है।
1: हेलो डॉक्टर साहब, फोन आ गया। हाँ
0: हेलो,
1: जी
0: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं गांव चौधरी वासी राजू अग्रवाल।
1: राजू भाई, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
0: मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले 770 J27 बीज आया करते नरमे के, अब भी आते हैं जी?
1: डॉक्टर साहब बताओ।
0: वो अब क्योंकि डिमांड नहीं है तो वो बीज तो मेंटेन कर रखा है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं है या इतनी मात्रा में नहीं है कि वो दिया जा सके क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड सारे बीटी की है तो इसलिए ये अवेलेबल शायद ना हो। ये कपास अनुभाग से आप पता कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में अगर कोई वो। और एक बात और पूछना चाहूंगा जी, पिछले साल और इस साल बहुत ही कम बिजाई हुई है जो कपास के अंदर में, कि इससे कोई बीमारियों में बचाव होगा दूसरी फसल बिजाई कर रहे हैं लोग? नहीं, दूसरी फसल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कपास के कीड़े अलग हैं, कपास की बीमारियां अलग हैं, दूसरी फसलों की अलग बीमारियां हैं। ऐसा नहीं कि एक बीमारी कई फसलों पे अटैक करेगी, लेकिन सुंडी का प्रकोप जरूर कम हो जाएगा क्योंकि
1: तो ये
0: आगे
1: पूछना चाहता था कि
0: सुंडी का
1: खाली जमीन के
0: प्रकोप
1: कारण
0: आने
1: क्या
0: वाले
1: है?
0: समय में कम रहेगा।

0: राजू भाई आपने फोन करा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब चलना अपने सवाल की तरफ।
1: हाँ जी, दीमक के लिए मैं कह रहा था कि जो गोबर की खाद है वो कच्ची ना डालें, गली सड़ी खाद हो तो वो उस पर दीमक नहीं आती। कच्ची खाद तो उसका दीमक का भोजन है, इसलिए वो ज्यादा बढ़ती है। दूसरा ये कि ये जितनी खुश्की होगी, जितनी लंबा खुश्की का समय चलेगा, उतनी दीमक की समस्या बढ़ेगी। बारिश आने पे दीमक नीचे चली जाती है और जब खुश्की होती है तो ऊपर आ जाती है। तो इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस दवाई है।
0: सब सवाल ले ले। हेलो
2: हेलो विना वेबे, राम राम।
0: राम राम भाई, ठीक से
2: मुल्लू बोलू, साहब नहीं आता।
0: हाँ मुल्लू भाई, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो।
2: डॉक्टर साहब राम राम जी।
1: राम राम जी।
2: डॉक्टर साहब बाड़ी बोई होगी कम से कम 1.5-2 महीना की होगी।
1: अच्छा।
2: नरमा।
1: हाँ हाँ।
2: पत्ते मुड़ रहे हैं, जम्मा बच्चे बन पत्ते मुड़िया है घर में।
1: हाँ वो थ्रिप्स आया हुआ है, चूरड़ा कहते हैं जिसे आप लोग।
2: जो मैं सुनी डॉक्टर साहब।
1: हाँ जी हाँ जी।
2: जो बीज ले आए थे उस दुकान वाले ने पूछा था, महाराज में 17-17 मार दिया, कोई नहीं उड़ा ना, मौसम साफ होगा ना, गर्मी होगी अच्छी, लू चल रही जिद अपने आप ठीक हो जाए, कोई सपरा करने की जरूरत
1: नहीं। नहीं लू से ठीक नहीं,
2: बीज नहीं हुआ।
1: आप थोड़ा सा एक दवाई बताऊंगा,
2: रोगोर बताओ थे आप।
1: रोगोर का आप स्प्रे कर दो, 150 ml डाल दो किले के 100 L पानी में, ये साफ हो जाएगा बिल्कुल।
2: अच्छा जी। और पहला पानी कच्चा ही लावा जी, तो फुट फुट की तो हो रही है।
1: हाँ तो ऐसा है, अगर सवेरे पत्ते मुरझाए मिले आपको तो लगाना है, शाम को तो जैसे पत्ते उलसा जाएंगे मुरझा जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। अगर अगले दिन सवेरे आप देखो खेत में, अगर पत्ते ठीक हो जाते हैं फिर पानी की जरूरत नहीं है। अगर सवेरे भी पत्ते मुरझाए मिले तब आप पानी लगाओ, क्योंकि ज्यादा पानी से ज्यादा बढ़वा लेगी तो, और वो जड़े नीचे नहीं जाएंगी पानी की तलाश में, गहरी नहीं
2: जाएंगे। तो पहली कह कर दे बरसात से पहले पानी ना लाओ।
1: हाँ वही बात आपको अपनानी होगी।
2: अच्छा जी
1: ठीक।
2: अरे एक मोड़ी ही जिस पछत्ती पछला पानी चल जाता है इसमें हमारे सुन में चल जाता है, इसकी बोली हवा होगी 15 दिन की तो होगी।
1: अच्छा।
2: उस छोटी छिद्दी है कि मैं उसको रखा तो आज क्या कि मैं और गोवा
1: ये सही बनेगा आपकी जो छिद्दी रहेगी ना, इसमें सुंडी भी बहुत कम आएगी और बढ़वार भी ज्यादा नहीं लगेगी, फाका भी कम आएगा, ये आपकी अच्छी बनेगी फसल।
2: ज्यादा होगा जी उसमें रोज झाड़ा पाड़ी खोदी, ये
1: खरपतवार तो ज्यादा होगा जब खाली जगह मिलेगी तो।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: उसके लिए तो आप खरपतवार की दवाई डालें या लड़ाई गुड़ाई करें।
2: अच्छा कौन सा।
1: हाँ ना छेड़ो, बढ़िया बनेगी आपकी।
0: तो मोलू भाई आपने फोन करा, इसके लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब देखो, जो मोलू भाई का सवाल था, ऐसा सवाल कई भाई भी सोच रहे होंगे जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, क्योंकि कई बार भाई यहाँ का फोन नहीं लगता। तो जो रोगोर का स्प्रे आपने बताया डॉक्टर साहब, तो इसका जो स्प्रे है वो कितनी बार किसान भाई कर सके हैं, कितने अंतराल पर कर सके हैं?
1: हम ये कहते हैं कि अगर खेत में कीड़ा आर्थिक आधार से ऊपर है, यानी कि नुकसान की स्थिति में उसकी संख्या है, तब करें, वैसे रूटीन में ना करें। वैसे तो ये जो रोगोर है रस चूसने वाले कीड़ों के लिए है, इसमें फाके को भी काबू करेगी, सफेद मक्खी को भी काबू करेगी, थ्रिप्स यानी चूरड़ा को भी काबू करेगी, तो ये सभी रस चूसे कीड़ों के विरुद्ध काम करेगी। लेकिन कीड़े खेत में हो और नुकसान करो तब कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब जैसे अब ये चूरड़ा बीमारी जो पूछी है मोलू भाई ने बताया है कि इसी तरह से जैसे सफेद मक्खी है या हरा तेल है, तो इनके जो लक्षण है डॉक्टर साहब कि किस तरह से पहचान माओ कि ये प्रकार इस प्रकार की बीमारी ये फसल में देखने मिल रही है?
1: हाँ बिल्कुल, कीड़े के अपने लक्षण होते हैं और किसान जागरूक है तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा कीड़ा है। जैसे मैं हरा तेल के बारे में बात करूं
0: जी,
1: तो किनारे से, क्योंकि इसके जो पौध और शिशु हैं बच्चे हैं वो पत्ते के निचली सतह पर रह के रस चूसते हैं, रस चूसने से क्या होगा जो हरापन है वो थोड़ा कम होगा किनारों से पहले
0: जी,
1: और धीरे धीरे फिर वो हरापन कम होगा तो पीले पत्ते किनारे से हो जाएंगे और अधिक रस चूसेंगे और संख्या बढ़ेगी तो कप की तरह ऊपर की तरह मुड़ जाएंगे पत्ते, तो ये खास पहचान है। और भी ज्यादा अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की रोकथाम की तो पत्ते लाल रंग के तांबे से रंग के हो जाते हैं या ईंट जैसे रंग के हो जाते हैं और वो फिर जल जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, तो ये इसका लक्षण है हरा तेले का। और जो व्हाइट फ्लाई है सफेद मक्खी जिसे किसान भाई फाका भी कहते हैं, फाके का क्या लक्षण है कि पौधे के नीचे शिशु और प्रौढ़ रस चूसते हैं और वो इतना रस चूसते हैं कि वो इतना पचा ही नहीं पाते, तो एक्सेस में जो चूसते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं हनीड्यू, यानी कि शहद की तरह होता है वो चिपचिपा हो जाता पत्ता बीमार से।
0: हेलो,
1: फोन ले लो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे
2: हैं?
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे
2: हैं?
0: हाँ भाई बोलो।
2: नर्मा ज्यादा
0: नर्मा ज्यादा अच्छा थोड़ा सा हाँ। बताओ
1: किसान भाई, ये अगर बीज आपने ज्यादा डाल दिया इस पे आपके एक तो हाइट लेगा नरमा, दूसरा फल कम आएगा ऊपर जाके आएगा, तो ये तो आपको थोड़ा करना दिल करना पड़ेगा, इसके थिनिंग यानी कि छटाई करनी पड़ेगी इसको। अच्छा हाँ, अड़ाई अड़ाई करो इसकी, जो फालतू पौधे निकल जाएंगे एक बार तो ऐसा लगेगा कि खेत सुनना सा हो गया, लेकिन जो पौधे बचेंगे वो पेड़ा मार जाएंगे, वो बढ़िया हो जाएंगे आपके पौधे। बीमारी ज्यादा आएगी, गुलाबी सुंडी ज्यादा आएगी, फाका ज्यादा आएगा, हरा तेला ज्यादा आएगा, जितनी ज्यादा नमी बढ़ेगी उतनी ये कीड़े ज्यादा आएंगे, तो ये तो आप है ना इसकी छटाई करो, ये तो बहुत जरूरी है। अब लाल चना करो, खेत अच्छा बढ़िया दिखेगा, अब तो आपका दिल नहीं करेगा फाड़ने को, लेकिन ये बाद में सेक देगा फिर ये। हाँ वो नहीं नहीं फिर भी बहुत बच जाएंगे पौधे,
2: पौधा ही बच जाएगा।
1: हाँ ठीक,
0: राजू भाई आपने फोन करा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे इस राजू भाई की समस्या थी कि बहुत ज्यादा मतलब पौधे हैं, तो वैसे देखो अब तो किसान भाई ने बीज रखी है, आगे खतरा अगर बात करना तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना बीज डालना चाहिए किसान भाई ने?
1: एक पैकेट काफी है बीटी बीटी वाला जो है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए
0: जी।
1: और अब तो जैसे गुलाबी सुंडी का जब से प्रकोप होने लगा है, अब तो मोर भी इसमें ज्यादा लाइन से लाइन की दूरी बताते हैं ताकि खेत में नमी कम बढ़े, धूप लगे, पौधे को फैलने के लिए जगह मिले, तो फाल अच्छा आएगा। और जितना ज्यादा बीज डालेंगे पौधा धूप और हवा के कंपटीशन में ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा,
0: नीचे तो हवा नहीं लग पाएगी पौधे हाँ। में तो भड़वार भी कम होगा डॉक्टर साहब, फिर उसके ऊपर ऊपर से ही बढ़ेगा। अगर हम पैदावार की बात करें तो
1: हाँ, पैदावार कम आएगी, फाल कम आएगा।
0: तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए डॉक्टर साहब?
1: जो सिफारिश की गई यूनिवर्सिटी की वो तो 3.5 फुट है
0: जी,
1: लेकिन जब से बीटी का प्रकोप बढ़ा है मैं ये सलाह दूंगा कि भाई कम से कम 5 फुट आ जाए लाइन लेंथ दूरी, तब बात बनेगी, ताकि हमारी फसल 6 फुट से ऊपर ना बढ़े। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए किसान के कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बढ़ेगी तो टिंडों के बोझ से वो झुकेगी, और झुकने से सारी समस्या पैदा होगी, ना तो वहाँ पर धूप लगे, ना हवा लगे, ना दवाई पहुँचेगी, और कीड़े के मौज है, नमी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये किसान थोड़ा ध्यान करें कि जब तक बीटी जीन काम कर रहा था जब तो सुंडी की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब सुंडी आने लगी, अब हमें थोड़े से और तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, खेत में नमी को कम करना है, तो ये लाइन से लाइन की दूरी बढ़ाएंगे नमी कम रहेगी, पूर्व पश्चिम में बिजाई करेंगे नमी कम रहेगी, 6 फुट से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे नमी कम रहेगी, यूरिया का कम प्रयोग और पानी बिल्कुल कंजूसी से दोगे नमी कम रहेगी, तो ये सारी चीज़ें सुंडी के लिए काम करेंगी, उसकी संख्या नहीं बढ़ने देंगे
0: जी। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आपने अभी हरा तेला और सफ़ेद मक्खी की पहचान लक्षण बताए कि कैसे हुई, तो इसकी रोकथाम खतर के उपाय करेंगे किसान हाँ। भाई
1: देखो, पहले तो मैं गैर रासायनिक तरीके बताऊंगा जो बिना दवाई के
0: जी।
1: ये जो सफ़ेद मक्खी है इसको क्या वातावरण चाहिए? इसको चाहिए 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम और मध्यम दर्जे की नमी, ज़्यादा नमी इसे नहीं चाहिए, मध्यम दर्जे की। वो कब होती है? जैसे एक बारिश होगी उसके बाद कई दिन बारिश नहीं हुई, तो मध्यम दर्जे की 60-65% नमी जो हवा में रह जाती है वो इसके लिए बहुत बढ़िया है, और 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, तो ये कंडीशन होगी। जब भी इस तरह का वातावरण बने तो किसान भाई समझे कि ये तेजी से बढ़ेगी। दूसरा ये कि जितनी पछेती हमारी फसल होगी उतनी ज़्यादा सफ़ेद मक्खी बढ़ेगी, तो हमें ये ध्यान रखना होगा अगेती बिजाई करें
0: जी,
1: क्योंकि अगर पछेती बिजाई करेंगे तो ये दूसरे खेतों की जो सफ़ेद मक्खी है वो भी आपके खेत में आ जाएगी उड़ के, क्योंकि उसके नए कच्चे पत्ते पसंद हैं। बाकी खेतों में फसल बढ़ जाएगी तो पत्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो पछेती जो फसल है उसमें दूसरे खेतों से भी आ जाएगी। और आपने देखा होगा एक आध खेत में या एक आध पौधा जो काफ़ी छोटा रह जाता है उसको बिल्कुल चूस के ख़त्म ही कर देती है ये
0: जी।
1: तो ये पछेती बिजाई से बचें, और जिन किस्मों के हाइब्रिड के पत्ते चौड़े हैं वो ना बोएं, छोटे पत्ते वाली बिजाई जो किस्में हैं वो बोएं ताकि नमी कम बढ़े और ये कम इसकी संख्या है। मैं इसके जो लक्षण बता रहा था कि वो जरूर से ज़्यादा रस चूसती है और एक्सेस में जो रस चूसती है वो निकाल देती है, इसको हनीड्यू कहते हैं शायद की तरह, वो उससे पत्ते चिपचिपे हो जाते हैं और इतना रस निकलता है कि वो नीचे पौधों पे पत्तों पे जो नीचे टिंडे बने हैं खिले टिंडे हैं उन पे सब पे टपकने लग जाते हैं और ये जो चिपचिपा पदार्थ है इस पे काली फंगस उग जाती है
0: जी डॉक्टर।
1: तो काली फंगस उगने से वो सारे पत्ते भी काले हो जाते हैं, नीचे के भाग भी, रुई उसमें है वो भी काली हो जाती है और इसको जब फैक्ट्री में जब धागे के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो ये इसका जो सबसे आसान उपाय मैं बताऊंगा किसान भाइयों, हालांकि किसान अपने मन से करता है बहुत सारे काम, कम ही मानता है, अगर आप हर स्प्रे में नीम की दवाई का इस्तेमाल करें तो काले पत्ते होने की नौबत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप हर स्प्रे में जब भी कोई स्प्रे करें, चाहे वो फाके के लिए करें, चाहे आप तेले के लिए करें, चाहे आप थ्रिप्स के लिए करें, चाहे सुंडी के लिए करें, हर स्प्रे में नीम की दवाई 250 ml 400 ml फसल के बढ़वार के हिसाब से 500 ml 1500 ppm से कम की दवाई न डालें, उसका असर कम होता है उसे कम का। तो ये अब नीम की दवाई हर स्प्रे में डालेंगे, फाके की वजह से, सफ़ेद मक्खी की वजह से काले पत्ते होने की नौबत नहीं आएंगी। बाकी और बहुत सी दवाइयाँ जैसे रोगोर है, आप इसमें डाल सकते हैं 300 ml रोगोर या 880 ml कॉन्फिडोर या 80 ग्राम एकतारा या 500 ml इथियन और 200 ग्राम जैसे डाइफेंथ्यूरॉन है, 60 ग्राम डाइनोटिफ्यूरॉन है, बहुत दवाइयाँ हैं, 300 ml बुप्रोफेजिन है
0: जी,
1: 400 से 500 ml पारीप्रोक्सीफेन है, तो ये बहुत सी दवाई अवेलेबल हैं, कई ट्रेड नेम से अवेलेबल हैं। तो ये कोशिश करें कि हर सफरे में अगर नीम की दवाई डलेगी तो इनकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी
0: जी। डॉक्टर साहब ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, वैसे देखो आपने अभी बताया था कि किसान अपने मन की करते हैं, क्योंकि देखो आज का जो किसान है डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमारे किसान भाइयों ने है, लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि अगर फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिखाई दे तो अपने नज़दीकी जो भी कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क जरूर करें और अपने जो नज़दीकी कृषि अधिकारी उन्हें अपने खेत में लेकर अपनी फसल का निरीक्षण जरूर करवाएं। तो डॉक्टर साहब एक जो मिली बग है उसका प्रकोप भी कपास की फसल में देखने मिला है, तो इसकी पहचान क्यों कर करें और ये कितना नुकसान पहुंचावे?
1: मिली बग ये खास बात ये है कि जिसने कोई पशु नहीं चरता उन पौधों पर चराई है, जैसे गाजर घास है, कांग्रेस घास भी कहते हैं उसको, या और जो ऐसे जंगलात में जो उगते हैं पौधे उन पर ये, जैसे वो जंगली सूरजमुखी है, पीले पीले फूल हर जगह आपको मिलेंगे, डोलों पे, किनारों पे, खाड़ों पे, उस पे ये काफ़ी पनपता है, तो ये ऐसे पौधों पे खा सकता है, तो ये समझो कि इसका हाजमा बहुत तेज है।
0: जिस
1: फसल को पशु नहीं खाते ये उन पे जीवन निर्वाह कर सकता है, तो इसमें जो क्षमता तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसको खाने वाला एक जीव एनासियस, वो परजीवी जिसे हम कहेंगे, वो आ चुका है कई साल से, अब इसको काबू कर रहा है ये। इसके जो शुरुआत है जैसे अपने खाल है, डोल है, या पेड़ों के नीचे ये कांग्रेस घास खड़ी है, वहाँ से शुरुआत होती है इसके मार्च अप्रैल में ही, और जैसे फसल हमारी आती है उसके ऊपर ये चला जाता है, और जिस पौधे पे जाता है वहाँ पे इसके जो मादा है वो अंडे देती है और उसमें से जो शिशु निकलते हैं वो एक ही जगह उसी पे इकट्ठा होकर रस चूसते हैं
0: जी।
1: और एक बार वो जम के बैठ गया ना तो उसको सुखा के दम लेगा उस टहनी को या तने को, तो ये इसकी खास, ये ज़्यादा चलता नहीं है, एक बार इसने जगह बना ली उसी को, उसी पे बैठा रहेगा सारी उम्र और उसको सुखा के दम लेगा। और ये भी वाइट फ्लाई की तरह ज़्यादा रस चूसता है तो ये भी चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, तो दूर से पहचान क्या है कि जहाँ भी मिलीबग होगा ये, तो वहाँ पे चींटियाँ मकोड़े चलते नजर आएंगे दूर से ही, क्योंकि उनको वो रस चाहिए
0: जी।
1: तो ये खास पहचान है, जिस पौधे पे चींटियों की मकोड़ों की गतिविधि आपको मिले आप समझो उस पर कोई दिक्कत है, उस पर मिलीबग आया हुआ। तो इसका कंट्रोल वैसे तो हम ये कहते हैं कि भाई जिस पौधे पे मिलीबग है उसी पे आप दवाई का स्प्रे करें, बाकी पे ना करें, क्योंकि इसको खाने वाला जो जीव है वो भी कुदरत में है, वो इसको ढूंढ लेता है, वो इसके शरीर के अंदर अपने अंडे दे देता है पंक्चर करके, और उन अंडों से उसके जो बच्चे निकलते हैं इसको अंदर से खा जाते हैं, इस तरह से मार देते हैं इसको। तो जिस दवाई तीन चार हैं, जैसे थायोडी कार्ब है 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, प्रोफेनोफोस है 3 ml/L पानी, या इकालक्स है कोनेलफोस 4 ml/L पानी, इस हिसाब से आप स्प्रे करेंगे ये मर भी जाएगा।
0: तो नीम की दवाई का प्रयोग इसमें भी कर सकें?
1: हाँ, लेकिन इस पे ज़्यादा नीम की दवाई का असर नहीं है, ये आपको करनी पड़ेगी अगर अगर फैलता दिखाई दे तो, अदरवाइज अन्यथा तो ये जैसे 1, 2, 4, 10, 20 पौधों पर शुरू हुआ उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसको इसका परजीवी आ जाता है, इसको खा जाता है। लेकिन अगर वो बढ़े तो फिर आप इन दवाओं का सेलेक्टिव प्रयोग करें केवल उन्हीं पौधों पर और आसपास के पौधों पर जहाँ पर इसका प्रकोप है, सारे खेत में स्प्रे ना करें, क्योंकि वो जो इसका परजीव है वो भी मारा जाएगा, फिर आगे और ज़्यादा समस्या आएगी।
0: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब देखो कपास की फसल में बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिनका अपन जिक्र करे है, तो कुछ फसलें ऐसी भी होंगी जो कपास की फसल के पास हमने नहीं उगानी चाहिए?
1: हाँ, जैसे जो जो कपास जाति की फसलें हैं, जैसे उस फैमिली की फसलें हैं, जैसे अपनी भिंडी है, भिंडी और कपास की एक ही फैमिली है, तो जो कीड़े भिंडी पे आते हैं वही कपास पे आते हैं। तो कोशिश करें कि भाई जैसे हरा तेला है वो भिंडी पे ज़्यादा आता है, कपास कम पसंद है भिंडी की तुलना में, तो भिंडी नरमा के पास ना लगाएं। इसी तरह जो चित्तीदार सुंडी है, काली सुंडी जिसे किसान कहते हैं, चित्तीदार सुंडी, वो भिंडी पे भी आती है और नरमा पे भी आती है, तो भिंडी पे ज़्यादा आती है क्योंकि उसमें पानी खा जाते इस्तेमाल करते हैं, नरम होती है, तो वो भिंडी दूर लगाएं, कपास के आसपास ना लगाएं, तो ये एक सावधानी है।
0: तो डॉक्टर साहब चलते चलते एक खास बात हमारे किसान भाइयों तो और बता दो कि उत्पादन बढ़ाने खातर किसान भाइयों ने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: उत्पादन के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये बीटी कपास का ज़्यादा प्रचलन है तो ज़्यादा टिंडे भी लगते हैं, तो इसको ज़्यादा खुराक भी चाहिए, तो किसान भाई इसकी खुराक का ध्यान करें कि इसकी जो डिमांड है हाइब्रिड कपास की तरह है, नॉर्मल कपास से 1.5 गुना इसको खाद चाहिए, तो उसका प्रयोग करें। और दूसरा, ये सितंबर के महीने में कपास अचानक झटका मार जाती है, अचानक सूख जाती है, किसान इसे चूरड़िया कहते हैं कि चूरड़िया आ गया जी, तो वो भी एक खुराक की कमी के कारण होता है। अगर हमने गोबर की खाद, हरी खाद, केचो खाद अगर पहले ज़मीन में डाली है तो फिर झटका मारने की समस्या नहीं आती है। तो एक तो खुराक की बात है, दूसरा अगेती बिजाई की बात है, तीसरा मैंने आपस में पौधों की और लाइनों की दूरी बढ़ाने की बात की है, पानी और यूरिया पे संतुलित प्रयोग करने की बात कही है कि जब जरूरत हो जितनी जरूरत हो उतना ही दें, फालतू ना दें। तो इन बातों का आप ध्यान करेंगे और माइंड में ये रखेंगे कि भाई 6 फुट से बढ़ने नहीं देनी आगे, तो ये आपकी फसल सुंडी से बच जाएगी और पैदावार भी अच्छी देगी।
0: जी डॉक्टर साहब, तो संदीप भाई ये हिसार के अनाज मंडी से अपने पास कुछ फसलों के भाव आ रहे हैं वो और किसान भाई एक बार बता दो।
3: तो किसान भाइयों, आज हिसार के मंडी में सरसों बिकी 7,000 से 7,700 रुपये प्रति क्विंटल, गवार बिके 5,500 से 5,600 रुपये प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा 5,700 से 5,800 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं बिका 2,450 से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 2,200 से 2,350 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा बिका 2,000 से 2,100 रुपये प्रति क्विंटल।
0: तो किसान भाई थे कुछ फसलों के भाव और किसान भाई ने जानकारी ली कपास की फसल में कीट प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राम कुमार जी, और डॉक्टर साहब ने पूरा ज्ञान टोकरे भर भर का हमारे किसान भाइयों तक और माणा तक बांटा, इस खातर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम जो हमारा किसान वाणी है उसका समय समाप्त हो लिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
0: और थोड़े से अंतराल के बाद हमारे गाँव में फिर मिलेंगे।

अभी आपने सुना कार्यक्रम किसानवाणी, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मारे गांव।

0: बदलो बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

फ्रॉम रेडियो सेट्स टू रील्स 90 सालों से कनेक्ट्स है इंडिया की फीलिंग से, हर दौर की आवाज, हर जनरेशन का भरोसा, सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ आकाशवाणी।

0: कार्यक्रम मारे गांव सुनने वाले सारे बण भाइयों ने एक बार फिर अपने भाई संदीप की
1: और मीना बाण की राम राम और राम राम सुखी नहीं रखेंगे संदीप भाई क्योंकि कड़ाके की गर्मी पड़न लग रही है। तो गर्मी में तो वैसे वो कह रहे हैं ना कि चाहे जीव जंतु हों चाहे पेड़ पौधे हों सारे सूख जाए, लेकिन फिर हम तो बात जाने वाले को नहीं बाण भाइयों का खूब मनोरंजन करवाएंगे और खूब ज्ञान की बात बतावांगे।
0: बिल्कुल, और देखो पिछले कार्यक्रम में हमने कपास की जानकारी ली और इस मौसम में जो है मीनाबाण देखो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लग रही है और मानस के साथ साथ पशु पक्षी सभी जो हैं गर्मी से त्रस्त हैं। देखो आदमी तो फिर भी छाया टोले हुए है लेकिन जो अपने पशु पक्षी हैं उनके बारे में आप इन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है अभी तो अपने देखो आप थर्मोस लेके आ रही हो, थर्मोस में पानी आपने ले रखा है, लेकिन जो हमारे पक्षी हैं ना उनके पास थर्मोस है ना उनके पास गिलास है ना उनके पास कोई बोतल है जिसमें वो अपने साथ पानी ले सके,
1: तो उनका घड़ा है
0: ना कोई घड़ा है उनका तो सारा आप ही है।
1: और क्योंकि भाई देखो गर्मी का मौसम जो है वो केवल इंसाना खातर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों खातर भी बहुत कठिन समय हुआ है। तेज धूप और बढ़ता तापमान और पानी की कमी उनके जीवन खातर एक बहुत बड़ी चुनौती बन जावे है और इस टाइम पे थोड़ी सी अगर हमारे अंदर संवेदनशीलता हो या जागरूकता हो तो जो हमारे ये बेजुबान जीव है इनकी जान बचा सका।
0: बिल्कुल, और जैसे जैसे तापमान बढ़ने लग जावे है पानी की कमी होने लग जावे तो पशु पक्षियों के शरीर पे और उनके जीवन चक्र पे बहुत ही बेहद गंभीर और जानलेवा प्रभाव आप इन्हें देखने मिले है। आप देखा है कि कई बार तो पैर में जो पक्षी है वे बैठे बैठे ही वहीं पर लुढ़क जावे हैं गर्मी के कारण क्योंकि पानी की जो कमी है वो उनके शरीर में हो जावे है और डिहाइड्रेशन के कारण जो है उनकी वहीं पर मौत हो जावे। इसके अलावा हीट स्ट्रोक जैसे लू चालन लाए जावे हैं मीनाबाण उनका असर भी हमारे पशु पक्षी यहाँ पर खूब पड़ा है। तो यदि हम थोड़ा सा समय निकाल के अपने पशु पक्षियों के लिए कहीं पर स्कोरे रखते हैं कहीं पर पानी की खेड़ बना दें तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा सारा मिल सके।
1: बिल्कुल, क्योंकि स्वच्छ और ठंडा पानी अगर हम उन्हें उपलब्ध करवा दें संदीप भाई चाहे अपनी गाय है भैंस है बकरी है घोड़ा है जिसे पालतू जानवर है और उनको दिन में कई बार हमने साफ पानी देना चाहिए और गर्मी में पशु जो है सामान्य दिनों की तुलना में आपने देखा है कि अधिक पानी पीवे हैं। पानी हमेशा साफ और ताजा अपन पिलाना चाहिए। गंदे पानी तय देखो अपन बेरा है कि संक्रमण और बीमारियां फैल सके जिससे कि हमारा जो पशु है वो बीमार हो सके है। पानी के बर्तनों को हर रोज अपने साफ करना चाहिए क्योंकि देखो आप भी साफ सुथरे बर्तन करके जब पानी पियो हैं संदीप भाई तो डांगर पशु बेजुबान धन है हमारा लेकिन उनका ख्याल रखना अपना एक परम कर्तव्य बना है।
0: बिल्कुल, और जो अपने पक्षी हैं भाई उनके लिए जो मीनाबाण आप मिट्टी के स्कोरे रख सका है क्योंकि प्लास्टिक और धातु की यदि अपनी चीज रख दी तो उसमें जो है वो बैठ नहीं पाओगे क्योंकि उनके जो पंजे हैं उनको रखने के लिए भी उन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए और जो छोटे अपने जो पक्षी हैं भाई जिस तरीके से चिड़िया हैं इनके लिए जो है इस प्रकार के स्कोरे आप ये रखें भाई जिनकी गहराई थोड़ी सी कम हो ताकि वो बिना किसी डर के भाई बिना डूबने के डर के अपने तसल्ली से पानी पी सके।
1: और वो पानी भी संदीप भाई किसान भाइयों ने बाणा ने जो भी है देखो इसमें किसानों की बात नहीं है ना कोई बाणा की बात हर इंसान की हम बात कर रहे हैं छायादार स्थान पर पानी रखें क्योंकि देखो पानी अगर आप धूप में रखेंगे संदीप भाई वो जल्दी गर्म हो जाएगा और गर्म पानी पीने का पशुओं को राहत नहीं मिलेगी क्योंकि देखो एक तो ठंडा पानी पीवे थोड़ी सी प्यास बुझ जाए तो गर्म पानी पी के तो देखो प्यास नहीं बुझ सकती। पानी के टैंक या टब देखो जो पेड़ हैं उनकी छांव में आप रख सका है और यदि छांव ना तो टीन या कपड़े से अस्थाई जो शेड बना सका है उन खातर कि भाई देखो हर जगह पेड़ की उपलब्धता नहीं होती तो जड़े से अपन दिखा कि डांगर पशु या पशु पक्षी ज्यादा बैठे हैं तो वहां पर आप मतलब वो शेड बना सका है तो ताकि वहां पर जो पशु पक्षी हैं वो आकर के पानी पी सके।
0: और बिल्कुल मीनाबाण देखो आपने बात करी ये बात केवल किसानों की नहीं है बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मीनाबाण गाँव से ज्यादा शहर में आप इन्हें इस तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि गाँव में तो आप ही देखा भाई अपने जो जोड़ है वहां पर पानी पीने लग रहे हैं किसी भाई ने खेड़ बना रखी है कोई खेत में पानी लगाने लग रहा है वहां पर भी जो है अपने पक्षी पानी पी रहे हैं लेकिन जो शहर में जिस प्रकार से सभी जगह कंक्रीट का जो एक प्रकार से मामला जो है सारे फैलने लग रहा है ना तो कहीं पर तालाब बचे हैं ना ज्यादा नहर में पानी आने लग रहा है गर्मियों के दिनों में क्योंकि लगातार जो है राशनिंग होने लग रही है तो शहर में जो है पक्षियों की तरफ जो है हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो हमारे पक्षी हैं वो इस जो गर्मी का जो मौसम चलने लग रहा है लू का जो समय चलने लग रहा है उसमें पानी पी के अपना गुजारा कर सकें।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो दोपहर के टाइम पे पशुओं को खुले मैदान में नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ठंडी और हवादार जगह पर अपना रखना चाहिए। समय समय पर शरीर पर पानी का छिड़काव करता रहना चाहिए। पशुशाला में पंखे और कूलर की व्यवस्था अगर हो सके तो उससे बढ़िया बात ही नहीं है, क्योंकि देखो डांगर पशुओं की बात है चाहे पशु पक्षियों की बात है संदीप भाई, ध्यान तो अपना रखना पड़ेगा। और एक जो दुधारू गाय है या भैंस है उसको गर्मियों में कम से कम 50 से 80 लीटर पानी की जरूरत पड़े है, तो उस चीज का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम किसान भाई तय और जो हमारे पशुपालक भाई केवल देखो पशुओं के लिए तो हम उन्हें कैसे कहा कि जल प्रबंधन की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और जो पशुपालक भाइयों की मीनाबाण आपने बात करी तो भाइयों ने एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि देखो मीनाबाण गर्मी का जो मौसम चालन लग रहा है इसमें हरे चारे का जो है संकट हो जावे है, क्योंकि आगामी जो ज्वार है उसमें भी आना भी समय है। तो पशुपालक भाई प्रतिदिन 50 से 80 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है अपने पशु को जरूर दे दें, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के जो है पोषक आहार में कमी ना रहे और उसका दूध का उत्पादन पूरा बना रहे।
1: संदीप भाई बातचीत आप करते रहेंगे, बाण भाइया का करवा दे। हाँ मनोरंजन भाई सुनाइए यार आगने।
2: लक्ष्मी चंद ने हर समय दुख जाता है क्या बताया, भाई समय पर आजे नरके कर ले या समय आवनी जानी।

0: कि घना तो घना अपने पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि देखो पेड़ केवल अपने समझ भाई छाया नहीं देते, बल्कि हमारे पशु पक्षियों के घर भी हुए हैं। जो कर नीम है, पिपल है, बरगद है, जामुन के पेड़ हैं, ये पशु पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। और देखो पानी रखने की अपन बात करी थी संदीप भाई, मिट्टी के बर्तन में पानी अपन रखना चाहिए, ठंडा रहे, क्योंकि कई बार अपन देखो प्लास्टिक के वो डब्बे से हुआ है, प्लास्टिक के वो टब से हुआ है, उनमें पानी रख दें तो उनमें तो देखो किसी भी हाल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी गर्म हो जाए। तो गर्म पानी देखो आप ही नहीं पी सकते, तो डांगर पशु को कर पीस कहेंगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मीनाबान, प्लास्टिक का जो है वो तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो अपने छोटे पक्षी हैं उनके लिए आप इस कोरे रक्स कहा मिट्टी के, और जो अपने बड़े जो बेसारा पशु घूमे हैं तो उनके लिए जो मीना बना पी सीमेंट की जो टंकियां हैं वह अपने घर के आसपास और सड़क की ऐसी जगह पापी रक्स कहाँ जहाँ पर थोड़ी सी छाया हुआ। और साथ में यदि कोई अपनी आवासीय समिति है तो वहाँ पर आप ही जिम्मेवारी किसी न किसी भाई की लगा सका है, क्योंकि देखो मीनाबाना यदि पानी लंबे समय तक रहोगा तो उसमें गंदगी भी हो जाओगी, क्योंकि धूल जो है इस मौसम में आप ही देखा कि खूब धूल भरी आंधी आ चाले हैं, तो पानी जो है आप इन्हें 24 घंटे में एक बार जरूर बदल देना चाहिए।
0: बिल्कुल आपने भी प्रयास करना चाहिए संदीप भाई, और अपने जो छोटे टाबर टिंगर है, मतलब बिल्कुल छोटे हैं, जो देखो जो 10-12-15 साल के बालक हैं, उनको भी हमने शिक्षा देनी चाहिए कि भाई छोटे छोटे जो कई जगह पर जितना ऊंचा उनका हाथ पहुंच सके या जितना तक वो पहुंचा सके, तो मिट्टी के कसोरे या मिट्टी के जो कई बार देखो ये मटके मटके टूट जाया करें संदीप भाई, उनका जो मतलब आधा मटका टूटा हुआ है उन्हें पानी भर भर कर अगर रखेंगे तो हमारे जो डांगर पशु हैं वो मतलब पानी पी सकेंगे, और मतलब गर्मी तक वो अपने आपने बचा सकेंगे।
1: एक चीज और भी आजकल आप देखने लग रहे हैं मीनाबान, जो अपने युवा साथी हैं वो बड़ा अच्छा काम इस दिशा में करने लग रहे हैं कि वो जो ड्रिप सिस्टम लगाने लग रहे हैं, भाई एक स्कोरा रख दिया और उसको ऊपर जो है 1-2 लीटर की पानी की बोतल उल्टी करके लटका दी, और जो उसका ढक्कन है उसमें यदि आप सुराख कर देंगे तो टपक टपक के जो पानी है वो धीरे धीरे स्कोरा में बढ़ता रहेगा, और जो आवाज जो पानी की है वो उस पेड़ पे जितने भी पक्षी बैठे हैं उन तक पहुंचेगी, और जो पक्षी है वो सीधा जो है उन टपकों के माध्यम से अपनी चोंच से पानी पी सके है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया व्यवस्था पी कर सका,
0: क्योंकि देखो इन चीजों की व्यवस्था तो संदीप भाई अपन करनी पड़ेगी। गर्मी में पानी की कमी के बहुत सारे दुष्प्रभाव जो कर अपना शरीर पर पड़े हैं, हमारे पशु पक्षियों पर भी पड़े हैं, क्योंकि अगर पानी की कमी हो जाएगी शरीर में डांगर पशुओं का तो शरीर कमजोर हो जाएगा, दूध उत्पादन भी कम होगा, बीमारियां भी घेर लेंगी पशुओं ने। और कई बार तो देखो गर्मी के कारण जैसे तुमने जिक्र करा था कि जो पशु पक्षियां कई बार रुड़ के पावे हैं, तो इसी तरह से जो दुधारू पशु है या दूसरे डांगर पशु है उनकी भी कई बार मृत्यु हो जाए। तो हम बाण भाइयों को एक संदेश देना चाहेंगे, हम अक्सर वहां की दया सबसे बड़ा धर्म है, गर्मी में किसी प्यासे पशु या पक्षी को पानी पिलाना वास्तव में उससे भी बड़ा पुण्यक्रम है। एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन और थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी संवेदना यह किसी जीव के लिए एक जीवन दान बन सकती है।
1: बिल्कुल, और आपने बताया कि जो पानी न मिलने से है जो अपने पशु पक्षी है उनमें जो है फ्लूइड्स जो है तरल पदार्थ है इसकी बारी कमी हो जावे है, और उनके जो अंग हैं वो काम करना बंद कर देवे हैं, और इससे जो है उनकी मृत्यु हो जावे। और इसके साथ साथ मीनाबान आप ये देखा कि अब जो है लुआ का जो है मौसम चलन लग रहा है, तो जो अपने जो मनुष्य हैं उनका तो पसीने आ जावे हैं, लेकिन जो हमारे पशु पक्षी हैं इनके हैं जो पसीने वाली ग्रंथियाँ हैं वो नहीं होती, और पानी के कारण इनका जो शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित नहीं रहता, और वो जो है हीट स्ट्रोक का शिकार हो जावे हैं। तो इनके शरीर को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर पानी की व्यवस्था हमने जरूर करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो संदीप भाई हम भरमैया ने एक रागनी और सुनवा दे।
1: तो भाई सुनाइए रागनी।

0: संदीप भाई मान भाई ने सुनी रागनी और कार्यक्रम हरे गांव का समय समाप्त हो लिया अपनी मान में ना मलिक ने
1: और भाई संदीप ने दे इजाजत सारे बन भाई ने राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महरे गांव एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने।

कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने में आप सभी साथियों का मैं अनिल भल्ला हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो श्रोताओं, अब ज़्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन मैसेजेस के साथ। हमें सबसे पहले मैसेज मिला है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। गांव हीपरसोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सीमर शेख और कृष्णा शेख ने मैसेज किया है। इसी के साथ ही नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव और जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। ये मैसेज हमें आया है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और इनका पूरा परिवार हमें मैसेज कर रहा है। हमें मैसेज मिला है छोटी बलिया मुंबई करजत से, अहमद भाई फुलबाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद और कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, रबिया, आशु अहमद का मैसेज हमें मिला है। और दादरी गेट भिवानी से हमें मैसेज भेजा है कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। इसी के साथ ही कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल हमें मैसेज भेज रहे हैं और इनके साथ कुछ श्रोता और हैं, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और हमें ये मैसेज आया है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, देवाश्री और माथुरी किरण का मैसेज हमें मिला है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो का मैसेज मिला है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज आया है सदर बाजार कुरावाली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनत कुमार और सोनम वर्मा ने मैसेज हमें भेजा है। और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा मैसेज कर रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार का मैसेज हमें मिला है। और लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप का मैसेज हमें मिला है। और गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने मैसेज हमें किया है। और हमें मैसेज किया है कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा, अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, देवंती हुड्डा, नरेंद्र, अंकिता हुड्डा, सुम्मू हुड्डा और तानिया हुड्डा का मैसेज हमें मिला है। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं। गांव मथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का मैसेज मिला है। और ये मैसेज हमें मिला है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का। आइए सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर राजा फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाजों में।

साथियों, जिंदगी की इस भागदौड़ में हम अक्सर अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कह पाते, लेकिन कभी कोई गाना तो कभी किसी अपने का संदेश, दिल की बात आसानी से कह जाता है। व्हाट्सएप ने उन एहसासों को एक नई आवाज दी है जहां हर मैसेज के पीछे किसी अपने की याद छुपी होती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर, अपने साथी अनिल भल्ला के साथ। तो आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 97292-53-272। हमें अगला मैसेज मिला है मुंदीचक भागलपुर से। दिलीप कुमार सोनी ने हमें मैसेज किया है, और एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा का मैसेज हमें मिला है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून। और ये हमें मैसेज किया है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार ने हमें मैसेज भेजा है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज आया है जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से। रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश ने मैसेज किया है। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। एसएम जावेद, शगुफ्ता, अंजुम और नजमुल होदा गुमला झारखंड से इनका मैसेज मिला है, और ये हमारे श्रोता हैं निवासा खुपटी महाराष्ट्र से, बंटू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास और हरी भाऊ ने मैसेज हमें किया है। ये हमारे श्रोता रहेंगे विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, शिवम रामगज खंडवा से इन्होंने मैसेज किया है, और इनके साथ श्रोता हैं शिवमपुरम कॉलोनी से कमला देवी महोबिया, अन्य अनाया और ईशु बाबा, शीतला चौक खंडवा से विशाल सिंह, विवेक सिंह और सभी इनके परिवार के सदस्यगण और मित्रगण हमें मैसेज कर रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव जाखुद राजस्थान से। हमारे श्रोता हैं शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ने हमें संदेश भेजा है। वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता मैसेज कर रहे हैं। अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा ये हमें मैसेज कर रहे हैं। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से इनका मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। जिला चरखी दादरी गांव चिड़िया दुधवा से सोनू संगेलिया, मंजीत, तनिष और सभी इनके परिवार के सदस्यगण मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और मनाली हिमाचल प्रदेश से हरीश, विनय, विनीत और रोजस का। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू का मैसेज हमें मिला है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर मैसेज कर रहे हैं। चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का संदेश हमें मिला है, और ये हमारे
श्रोता रहेंगे। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। हमारे अगले श्रोता हैं जिला परशाला मुलांची पैठण से, चांद मामू, शेख फुरखान, शेख गुफरान, शेख जाकिया, शेख खुशी और शेख आसमा मोरबी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ ही ये मैसेज हमें भेजा है लुधियाना पंजाब से अक्षित और परीक्षित ने। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में आशिकी फिल्म का ये गीत।

साथियों, हमें कुछ मैसेज और मिले हैं, जिनमें से हैं वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से, प्रेम सहरण, मोनिका और मनीष सहरण। इसी के साथ ही गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश, रजत और बेबी और गरिमा बगड़िया का मैसेज हमें मिला है। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बरासा ने मैसेज किया है। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है आशा गुगलानी, सोनिया कालका और लिल्लू बंसल, मलुक सिंह, माधवी, इन्होंने हमें मैसेज किया है। इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा। इसी के साथ ही ये हमें मैसेज मिला है गांव खारियां ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतबीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया। हमें अगला मैसेज प्राप्त हुआ है, ये हमारे श्रोता हैं गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से, जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर का मैसेज मिला है। और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक ने मैसेज किया है। कस्बा अग्रवाल मंडी टटेरी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान का मैसेज प्राप्त हुआ है। देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, ये हमें डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं। ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का मैसेज मिला है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़ का मैसेज मिला है। और उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशी गोस्वामी, शिवन्या और अन्नू गोस्वामी ने मैसेज किया है। सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ हमें मैसेज भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। गांव चूली देशवाली तहसील आदमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़ और मास्टर इंद्र मोहन शर्मा, रामनिवास पांडू का मैसेज प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर माचिस फिल्म का ये गीत।

दोस्तों हमें मैसेज किया है, हमारे श्रोता रहेंगे अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, यश और प्रायण वर्मा। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरण हुजरे और रेहान शेख ने मैसेज किया है। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला और सोपान तायडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर का मैसेज प्राप्त हुआ है। ये हमारे श्रोता रहेंगे जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साही गांव से दवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देबेन और सभी इनके परिवार के सदस्यगण मैसेज कर रहे हैं। गांव शेरड़ा तहसील भादरा से मंटू शर्मा का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता और डिंपल देवांगन ने मैसेज हमें किया है। हमारे अगले श्रोता हैं गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज प्राप्त हुआ है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। हमें अगला मैसेज भेजने वाले श्रोता रहेंगे चेक 5 MD पतरोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से हमारे श्रोता हैं बादल सिंह गिल, श्रीमती कमलेश, टीनू टीनू, नीरू, प्रीति, मोनू, डॉक्टर अंकित गिल, डॉक्टर वानिका और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, प्रतीक्षा, शैलेश, स्वप्नील, रक्षिता और रियांश लोखंडे का मैसेज मिला है। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से सुल्तान सिंह तरड़, कपिल देव, हिमानी जाखड़ का मैसेज हमें मिला है और ये मैसेज हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज हमें मिला है। गंजडू डवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और इनके साथ कुछ श्रोता और हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का मैसेज मिला है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है अडार नंदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा का। श्री सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सर्वदा देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी सानवी और कुमारी कल्पना देशमुख का मैसेज हमें मिला है ग्राम पंचायत काले गांव जाफराबाद से।
और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, ये हमारे श्रोता हैं। बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लक्की, तानिया और सभी इनके परिवार के सदस्यगण। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े का मैसेज हमें मिला है। और बावड़ी गेट भिवानी से रोशनलाल पचेरवाल, युवान पचेरवाल, योगेश, दीक्षा, उपासना, कुलदीप, धर्मवीर खटक, प्रेम, उमेश और उपेंद्र का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर हेलो ब्रदर फिल्म का ये गीत।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, ये कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने यहीं संपन्न होता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने सुझाव प्रतिक्रिया या अपनी फरमाइश जरूर भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 9792523272।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत

0: प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
4: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

पंचायत स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में

0: अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं,

0: के संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन हुडमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।
4: The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner.

वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की गालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की गलियां महफिल की है। अनकही अनसुनी आरज़ू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नहीं है।

एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों

जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थी और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये नगमे।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're listening in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: की शादी।
1: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जानी माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
2: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंक।

आदिति चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्र।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
1: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो

0: ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। हाँ हाँ।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के विविध भारती मुंबई केंद्र से किया जा रहा था। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल पर आधारित।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। सभी को अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके फरमाइश की और आपके मैसेजेस, जो मैसेज आपने ईमेल के जरिए हम तक भेजे हैं, और आपको एक बार फिर से हम ईमेल आईडी बता दें। हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com।

साथियों, करते हैं शुरुआत इस मैसेज के साथ। हमें मैसेज आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता करण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई का। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है, हमारे अगले श्रोता रहेंगे वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। और ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। और इनके साथ श्रोता हैं आकांक्षा कुंज रिसाली भिलाई से और मुरली मीरा शिवम वर्मा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। और ये ईमेल हमें आई है चंडीगढ़ सिटी से, हमारे श्रोता हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नील शर्मा और जयवीर सिंह ठाकुर। कालका से शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज ने अपनी फरमाइश भेजी है। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

मरहरा दरवाजा एटा से ईमेल संदेश किया है नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम और यशफ अब्बासी ने। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन का संदेश हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें संदेश आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। ये हमारे श्रोता रहेंगे कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। और इसी के साथ ही हमें संदेश किया है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप का मैसेज हमें मिला है। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। पद्मा टॉकिच नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह और मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का मैसेज हमें मिला है। सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर लता मुकेशकर और मुकेश की आवाज में श्री 420 फिल्म का ये गीत।

गांव जाखोद से हमें ईमेल संदेश भेजा है। हमारे श्रोता हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। इसी के साथ ही हमें यह संदेश मिला है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर और विशाल नाहवकर। और ये संदेश हमें भेजा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति आशा दीपांजलि गायकवाड़, दीक्षा बाघमारे और शशांक बाघमारे ने। और ये संदेश हमारे पास आया है ईमेल के जरिए नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू ने हमें संदेश भेजा है। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कुमार सानू की आवाज में दीवाना फिल्म का ये गीत।

अगले गाने के लिए हमारे पास ईमेल्स आई हैं। हमारे श्रोता हैं रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। हनुमानगढ़ टांग राजस्थान से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इसी के साथ ही रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का संदेश हमें मिला है और ये हमारे श्रोता रहेंगे अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से, सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने हमें फरमाइश भेजी है और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तनवी, लक्षा सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजा है पांढरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे और बल्हार शहर से सूरज लौंडे, प्राची और एक लगा ने ये मैसेज हमें किया है। इसी के साथ ही हमें मैसेज आया है ईमेल के जरिए बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में सोतन फिल्म का ये गीत।

नाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी ने संदेश किया है। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश उद्धव कड़वासरा और कुंदन जाखड़।

मैसेज मिला है और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो ने मैसेज किया है। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या बिजारनिया का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें ये ईमेल प्राप्त हुई है। हमारे श्रोता हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक। और यह मैसेज हमें मिला है लुधियाना पंजाब से अक्षित और प्रक्षित का। शेरवानी स्कूल गंजडू डवारा उत्तर प्रदेश से अफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुगना और आलिया अंसारी ने मैसेज किया है और ये मैसेज हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव का हमें मैसेज मिला है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप का मैसेज हमें ईमेल के जरिए प्राप्त हुआ है। सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की युगल आवाजों में प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत है।

दोस्तों हमें ईमेल भेजी है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज हिमांशु सुथार ने। इसी के साथ ही हमें ये ईमेल आई है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया आयान बाबू और रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया कविता महोबिया और पेंटर बाबू ने हमें ईमेल भेजी है। इसी के साथ ही हमें ये संदेश प्राप्त हुआ है। हमारे श्रोता रहेंगे कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का मैसेज हमें मिला है। दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेंद्रमणि वर्मा नोखेलाल वर्मा ने हमें संदेश भेजा है। सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर गजल फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने हमें ईमेल भेजी है और मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से और दुबीहा नवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय का मैसेज हमें मिला है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद ने मैसेज किया है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज आया है, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जय श्री महित्रे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा का। और ये मैसेज हमें किया है, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है परदेश फिल्म का ये गीत।

साथियों, चलते चलते हमें कुछ और ईमेल संदेश मिले हैं, जिसमें से हैं समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास, और बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, और करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और ये संदेश हमें मिला है राजकोट से प्रवीण सोनी, कंचन कुसुम, कलावती, जूली और जगदीश जोहरी ने हमें संदेश किया है, और इसी के साथ ही हमें ये संदेश भेजा है शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंदिराबाई और छकुली खोबरखेड़े ने संदेश भेजा है, खांडवी बुलढाणा से दीपाली राम धाडे, सवराज राम धाडे, और थिलोरी अमरावती से सुनेना तनुज भोंडे का मैसेज हमें मिला है। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ और शौर्य नामदेव ने ईमेल के जरिए संदेश भेजा है, और ये है गांव चूली देशवाली तहसील आदमपुर से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास पांडु, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत ने हमें मैसेज किया है। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम ई फरमाइश यानी कि ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com। अब दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप 2 में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।